0: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को. इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर. खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: Breakfast mein kya khana hai?
5: Keema paratha.
6: Mummy, omelette paratha.
7: Beti, halwa puri aur tarkari.
4: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
0: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा. चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन. कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो. वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट signaturecuisine.net.
8: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: से गली।
1: भाई मुझे भी पता है, आपको भी लगी है मेरी कमी, क्योंकि मैं तो आई नहीं थी लेकिन मैं अब आ गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा कमी फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। इट इज़ द टाइम व्हेन द वन एंड ओनली इबी द हिप्पी हैज़ अराइव्ड इन द स्टूडियो। यस, योर बेस्टी एंड इन सम केसेस योर एगनी आंट, स्पेशली प्यार मोहब्बत की बातें रिलेटेड, राइट? लेकिन भाई, इट इज टाइम फॉर माई शो एन इवनिंग इन डैलस। दैट्स राइट गाइस, आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल ट्यूसडे। भाई आज तो मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा था वेदर सही हो जाएगा, लेकिन आज फिर दोबारा से इतनी गर्मी है एंड आई एम फीलिंग

Having a wonderful Tuesday. भाई आज तो मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा था वेदर सही हो जाएगा, लेकिन आज फिर दोबारा से इतनी गर्मी है. एंड आई एम फीलिंग लाइक ब्रो इट्स समर टू. रिमेम्बर वी टॉक्ट अबाउट इट, देर इज समर वन एंड देर इज समर टू एंड वी आर नाउ इन समर टू. दैट्स राइट गाइज, बिफोर इट एक्चुअली बिकम्स फॉल आई थिंक एंड ऑफ द मंथ, बट आई थिंक वी आर ऑल लाइक प्रॉपरली वेटिंग कि फॉल फॉल कब आ जाए. तो गाइज लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द शो. वी गोना फिनिश आवर कॉन्वर्सेशन दैट वी डिड नॉट गेट टू फिनिश यस्टरडे. सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई विल सी यू गाइज सून आफ्टर दीज सॉन्ग्स.

भाई डार्लिंग्स, अगर आपको भी हमारे गाने ऐसे सुनने हैं देन डोंट फॉरगेट, आई हैव एन इवेंट कमिंग अप एट द एंड ऑफ दिस मंथ विच इज़ द 30th ऑफ अक्टूबर एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन. यस, इट इज़ ए ग्रेट लिटिल वेन्यू. इट्स अ म्यूजिक क्लब, इट्स एसेंशली अ जैज क्लब. एंड उनके वहाँ पे ना रोज़ लाइव म्यूजिक होता है एंड इट इज़ रियली टॉप क्वालिटी लाइव म्यूजिक. इट्स नॉट जस्ट एवं उठ के आ गए कैरियोके पे गाने, नहीं, इट्स लाइक एक्चुअली गुड म्यूजिक. सो आई एम परफॉर्मिंग देयर विथ माई बॉलीवुड बैंड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. सो वी गोना बी परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ हिट ट्यून्स ऑल द वे फ्रॉम द 1950s टू द मॉडर्न डे ट्यून्स एंड इट्स गोइंग टू बी सो सो सुपर अमेजिंग. वी स्टार्ट एट 7 o'clock. इफ यू गाइज आर इन टाउन प्लीज डू कम बाय एंड देन मे बी वी कैन हैव अ मीट एंड ग्रीट ऑल्सो. ऑल्सो जस्ट सो टू लेट यू नो, दिस इज अ फ्री इवेंट, देर आर नो एंट्री चार्जेस, बट देर इज अ कवर विच यू कैन पे वंस यू अराइव देर. एंड देन सेकेंड थिंग इज दिस इज अ सिंग अलॉन्ग इवेंट, सो वी विल गिव यू लिरिक्स शीट्स. देर इज गोना बी अ क्यू आर कोड दैट यू कैन स्कैन एंड यू कैन ओपन द लिरिक्स फ्रॉम योर फोन एंड यू कैन ज्वाइन इन विद द मस्ती. से याद आया भाई, ग्रैमी अवार्ड्स, आपको पता है ना क्या होता है ग्रैमी अवार्ड्स? इज बेसिकली क्या बोलते हैं, इट्स लाइक व्हाट यू कॉल इट, इट्स लाइक द ऑस्कर्स ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री ग्लोबली, नॉट जस्ट अमेरिका, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू रिलीज योर म्यूजिक इन अमेरिका, देन ग्लोबल इट काउंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स क्वाइट अ बिग डील टू बी इवन नॉमिनेटेड फॉर अ ग्रैमी बिकॉज इट्स अ पियर वोटेड अवार्ड. इट्स नॉट लाइक कोई एक पैनल है ऐसे ही नेपोटिज्म चलेगी, किसी को भी उठा के अवार्ड दे दिया, नहीं. इट्स लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, दे वोट फॉर ईच अदर इफ दे लाइक ईच अदर्स म्यूजिक. सो यू नो पीपल लाइक हु आर प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री. एंड आई जस्ट फाउंड आउट अमंगस्ट ऑल द अदर आर्टिस्ट, नॉर्मली इंडियंस इस ग्रैमी अवार्ड में ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, द एक्सेप्शंस बींग very very few Indians have actually won a Grammy, especially if they are based out of India. Lekin I just found that that T Series, the music company, has entered all of Dhurandhar's song Dhurandhar the Revenge in the Grammy ballot, and they are in the global music category for the most of it, which is a new category that started like 2 years ago. And a lot of Indian musicians are submitting their records in that global music category. It's good. I mean, I think it's a great thing. Tonight what I have decided is I'm going to play you some of these, kyunki main bhi hoon ballot mein, so I know who are the people who have entered their songs in the Grammys, because, you know, we get to know. So I'm going to play you all the artists that you may have heard of or you may not have heard of who are in the Grammys, and I will play you songs by them. So let's listen to Dhurandhar's song. This is Ari Ari.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे सुइट 205 फ्रिस्को।
2: हे, आर यू गोइंग टू रवि'स ट्रेड मार्केट दिस ईयर?
3: ऑफ कोर्स, वेयर एल्स कैन यू चेक आउट न्यू प्रोडक्ट्स, मीट वेंडर्स, ग्रैब एक्सक्लूसिव डील्स, गिवअवेज एंड सेव बिग फॉर योर स्टोर।
2: व्हेन इज इट?
3: थर्सडे ऑक्टोबर 29th, फ्राइडे ऑक्टोबर 30th एंड सैटरडे ऑक्टोबर 31st फ्रॉम 9 AM टू 5 PM एट रवि'स इंपोर्ट वेयरहाउस ऑन हैरी हाइंस बुलेवार्ड इन डैलस।
2: परफेक्ट, आई विल रजिस्टर अहेड ऑन shopravis.com। रवि'स 21st एनुअल ट्रेड मार्केट, बिगर डील्स, बिगर अपॉर्चुनिटीज, बिगर बिजनेस। कस्टमर्स मस्ट ब्रिंग देयर वैलिड टैक्स नंबर एंड टोबैको लाइसेंस।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। Join Paasya and market your business for free. Showcase your deals and get discovered by customers nearby. Paasya, be where your customers are looking.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
14: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
1: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

भाई जिनको नहीं पता वो किसका गाना है, दैट वॉज रश्मीत कौर. रश्मीत कौर वॉज ऑन हर US टूर ऑल्सो अ फ्यू मंथ्स अगो. आई थिंक सम टाइम इन जुलाई आई बिलीव. उनका डैलस में भी शो होने वाला था जो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्स अनफॉर्चुनेटली. हाउएवर हर अदर शोज इन न्यूयॉर्क एंड शिकागो वर ए सुपर सुपर सुपर हिट. आई रियली लाइक हर. शी इज ऑल्सो in the ballot for a Grammy. Of course, this is the only the first round of nominations. ये final nominations नहीं है. तो इसके बाद मतलब entries like हजारों के तौगात में आती है. मतलब there are like so many. If you guys don't know how the Grammys work, there's इतनी सारी entries आती है, इतनी सारी entries आती है. Then there is one panel of distinguished individuals in the music industry, and then there are of course voting members. You know, or voting member, आपको बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, which means you have to have recommendations from other Grammy winners, or या फिर be nominated for a Grammy, and then you automatically become a voting member. So it's a very closed group. So वो वोटिंग मेंबर्स फिर वोट करते हैं एंड एवरीथिंग. सो नॉट एनीबॉडी कैन विन अ ग्रैमी लाइक दैट, यू नो. सो दैट वाज हर. शी इज आल्सो, हर एल्बम परिंदा इज आल्सो इन द ग्रैमीज फॉर ए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम. दिस इज अनदर बैंड कॉल्ड इंडी लैट. इट इज लेड बाय सिद्धांत भाटिया, हु इज ए मुंबई बेस्ड म्यूजिशियन. ही इज आल्सो इन द रनिंग फॉर ए ग्रैमी under the global music category again, because a lot of the Indian musicians are going for that. So this is called Muevete, where he's collaborated with musicians across Chile and Venezuela. So it's pretty cool. I like this track a lot.

0: गाइज एंड वी आर बैक. यस, दिस इज इपी द हिपी. जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस महीने एटलीस्ट इस हफ्ते के एंड तक हम लोग एक नहीं दो दो गिव अवे खेलेंगे. हमारा पहला गिव अवे इज फ्रॉम इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल. यस गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि नवरात्रि के अवसर पर क्या पहने जाए, वही सेम ओल्ड पुराने पुराने कपड़े पहन के आप बोर हो चुके हैं, देन यू नीड टू हेड डाउन टू ज्योतिका पटेल स्टोर इन अर्विंग. वेयर इन अर्विंग? वैली रैंच इन अर्विंग, नेक्स्ट टू द वॉलमार्ट. यू नो इट्स वेरी क्लोज टू दैट वॉलमार्ट. एंड यू कैन एक्सप्लोर ए स्टनिंग कलेक्शन of contemporary and stylish chaniya cholis along with customizable wedding and bridal wear for both men and women at Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel. You can call 945-444-2194 or visit jyotikapateldesigns.com. So without further ado, let's play our game. My game is very simple. Jyotika Patel se agar aap wala answer karte hain, ye wala question answer karte hain, then you can win a beautiful pair of earrings from Jyotika Patel Designs. Okay? My number is 972-235-5555. I'm going to just play you the intro of a song and you have to guess what song this is. It's not hard. It's like super easy. So, let's go ahead and play it. Are we ready for the song? Chalo, gana sune. And here we go. Isko thoda sa rewind karna padega bhai. And rewind, and actually ab to rewind bhi nahi hota, ab to sirf drag hota hai, but it's okay. I am still a millennial, you know. Here we go. Aapko gana guess karna hai. And hamari pehli call aa chuki hai. Let us see. Hi, can you hear me?
1: Yes.
0: Hello, कैसे हैं आप? पहले तो अपना नाम बताइए and दूसरा tell me the correct answer. पहले नाम बताइए अपना.
1: My name is Sanjay. I think the song is Chikni Chameli.
0: Very
1: from
0: nice.
1: Movies Agnipath.
0: Yes. Sanjay, congratulations. आप जीत चुके हैं Jyotika Patel की तरफ से beautiful earrings. जरा जोर से ताली बजाते हैं संजय के लिए. तो संजय, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस. आप लाइन पे बने रहिए, ये मैं गाना बजाती हूँ हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम योर प्राइज. ओके,
1: श्योर.
0: ओके गाइस, एंजॉय द सॉन्ग. मैं तो बड़े दिनों बाद ही गाना सुना.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Heere moti, main na chahu.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
6: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
6: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी. फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
8: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है.
9: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hai.
11: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai. Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
12: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
15: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी. इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस. सच कहूं, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है.
16: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
14: आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है.
17: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है. कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
18: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
19: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
20: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के.
18: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
20: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
17: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
21: Har mohabbat ki awaaz, the one and only living legend Rahat Fateh Ali Khan.
22: Rahat Fateh Ali Khan.
0: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
21: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
0: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
21: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.
22: Jag ghume aa thare jaisa na koi.

No, bhai, that's not what we are listening to. Guys, this is Abida Hippie and only on Funasia Radio 104.9 FM. And you are listening to my show, An Evening in Dallas. That's right, guys. Chalo khele hamara dusra giveaway. Dusra giveaway is from Padam from Chandigarh Bites. Yes, you can win a $10 discount gift card from Chandigarh Bites on a dine-in bill of $50. लेकिन उसके पहले बिफोर वी प्ले द गेम आपको पता है दे हैव ए स्पेशल थाली जो रोज रोटेट होती है विथ न्यू डिशेज एवरी डे एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर लंच दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स फॉर ऑल लिसनर्स प्लीज़ आपने पिछले एक महीने में ये वाला गिव अवे नहीं जीता है या कोई और गिव अवे नहीं जीता है क्योंकि बाकी सबको भी चांस देना चाहिए अगर आपने जीत लिए हैं बहुत सारे गिव अवे वेल वेरी गुड कंग्रेचुलेशंस आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है लेकिन दूसरों को भी कनेक्ट होने का मौका दीजिए गाइज ओके तो विदाउट फर्दर डू वी आर गोइंग टू प्ले द वर्ड अंताक्षरी तो वर्ड अंताक्षरी आपको पता है कैसे खेलते हैं आई एम गोना प्ले यू द इन द बिगिनिंग ऑफ अ सॉन्ग मतलब शुरू के 30 सेकेंड आपको उसमें से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड उठा के उससे रिलेटेड एक और गाना गाना है तो अगर लैला जैसे वो गाना बज रहा था लैला मैं लैला तो लैला से अगर आपको लैला से गाना गाना है तो लैला से गाना शुरू करना पड़ेगा कोई और वाला ठीक है मुझे नहीं पता लैला से ये वाला बड़ा मुश्किल होता एक्चुअली यही वाला देना चाहिए था लेकिन आई एम नाइस लाइक दैट So my number is 972-235-5555. So let's go ahead and play the game. Here we go. This is our song.

0: that you decided?
1: My name is Nupur.
0: Okay, Nupur, go for it.
1: And we will sing song for the word Jahan.
0: Go for it, yes.
1: It's Jab Tak Hai Jahan.
0: Lekin gana padega aapko.
1: Jab Tak Hai Jahan. Jaane Jahan. Main nachungi. Main nachungi.
0: Jab Tak Hai Jahan. Chalo, saath mein gaa da na phir. One, two, three, yes. Go. Jab Tak Hai Jahan.
1: Jab Tak Hai Jahan. Jaane Jahan. Jaane Jahan.
0: मैं
1: नाचूंगी
2: मैं भी नाचूंगी
0: आपके हस्बैंड भी बोल रहे हैं मैं भी नाचूंगी पीछे से
1: इट वाज सो फनी वी आर न्यू हियर वी जस्ट डायल्ड इन सिटिंग इन आवर कार
0: वेल थैंक यू वेलकम टू डैलस यू नो व्हाट अ ग्रैंड वेलकम
1: बट वी लव हियरिंग यू ऑल द टाइम यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब सो थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस ऑल द टाइम
0: थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव So what I'm going to do is, I'm going to play the song for our audience in the background. And our line pe bane rahiye, and then I will tell you how to redeem your prize, okay?
1: Perfect, okay. Perfect.
0: Awesome. Guys, you enjoy the song. Tab tak main Nupur se baate karke aati hun, okay?
1: Hello, hello.

And guys, we are back. Yes, yes, yes. Congratulations to Nupur for winning that wonderful giveaway. भाई उनसे बात करते करते मुझे ये पता चला कि नुपुर के जो हस्बैंड है वो हरियाणवी है. तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे जो एक सेइंग है ना, एक चुटकुला है कि भाई हमारा कभी कॉल कोई प्राइज हम कभी नहीं जीते हैं. वैसे भाई मेरा भी वही किस्मत है. आई थिंक 90% लोगों का ही वही किस्मत है कि प्राइज कभी वैसे जीतते नहीं है, लेकिन जब मिल जाती तब लगता है कि ओए होए ये क्या जीत गए, यू नो, लाइक इट्स लाइक ओ वाओ वैसा वाला. तो अब उन्होंने बोला है कि वो कभी प्राइज वगैरह वैसे नहीं जीते. तो मैंने कहा उनके एक चुटकुला उन्होंने मारा कि क्या बोलते हैं कि तीतर भी उड़ जाते हैं. वो ऐसे हैं कि कुछ भी करते हैं तो तीतर भी उड़ जाता है. फिर मैंने बोला कि देखो हमने वो बचपन में वो सेइंग नहीं सुनी हुई क्या, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर. तो भाई मैंने पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी ये पता करने में कि तीतर है क्या चीज़. ये नहीं पता मुझे. आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ अ बर्ड. हाउएवर ये गाना आपके लिए नुपुर और आपके हस्बैंड के लिए. भाई आप वेलकम टू डैलस. आई नो यू गाइस आर न्यू इन डैलस एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो.

and friends, we are back. Yes, you are still listening to Ippy the Hippie only on Funasia Radio 104.9 FM. Bhai, kal maine na bade dino baad jaake, I am on this like this trip of watching old movies, okay? Like, and I don't mean like really, really old movies also. I mean like movies that have released in the last 10 years ya jo bhi, shayad kuch miss ho gayi mere se ya jo bhi. और अभी ये सुशांत सिंह राजपूत का केस दोबारा खुल गया है. वी ऑल नो वी लॉस्ट सच अ वंडरफुल एक्टर एट सच अ यंग एज. ही पास्ड अवे इन 2020. वेरी ट्रेजिक, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ, राइट? यू गाइज रिमेंबर द होल थिंग, राइट, वेयर हिज मैनेजर फर्स्ट गॉट किल्ड एंड ऑल ऑफ दैट. अपेरेंटली दे आर बैक. देयर वाज वन स्टिंग ऑपरेशन वीडियो ऑफकोर्स बाय द वन एंड ओनली अर्णब गोस्वामी, बिकॉज ही डज ऑल ऑफ दोज थिंग्स. And apparently they interviewed one of the police officers who was at the post-mortem. Aur kuch nayi nayi baatein aayi hain saamne jo pehle nahi aayi thi. And they are reopening the case and they are claiming that it was not a suicide, but it was actually a planned murder. However, I mean, it's so sad, right? I mean, sometimes mujhe ye lagta hai ki yaar, kuch jo actors hai jo deserving hai, bhagwan ko zyada jaldi bula lete hai. Kuch log, they deserve to live a little bit longer, maybe in another life. लेकिन उससे मुझे याद आया कि यू नो माई नेटफ्लिक्स स्टार्टेड शोइंग मी ऑल द मूवीज दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ पार्ट ऑफ बिकॉज ही इज ट्रेंडिंग अगेन. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी. और एक ना उसने उसमें ना एक डायलॉग था, अरे यार मेरे को, मैं भूल गई. अब वो जब डायलॉग याद आएगा तब मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी. बट क्योंकि डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के गाने थोड़े से हटके थे, दे वर ऑल they were not composed by like some big artist like A.R. Rahman or Amit Trivedi or anything. No, they were actually songs that were all composed by indie artists. Indie माने उनका उनके छोटे छोटे bands हैं and performances करते हैं वो लोग, अपने original music बनाते हैं and all of that. And Bollywood composers necessarily नहीं है. उसमें से एक है Peter Cat Recording Company, which I quite like. Then other one was of course Mad Boy Mink, you know the one, you know who's a part of that band, Ritik Roshan ki current girlfriend Saba Azad, she's a part of that. So I'm gonna play you some songs after this one from that movie because I think wo gaane, they deserve to come out. They were thode se hatke, not the typical Punjabi Bollywood music, but I think they were pretty good. So, लेकिन उसके पहले एक ये गाना सुनते हैं जो आप सबको शायद पता ही है.

0: दे बसंती।
1: और बिस्मिल्दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगी उतना पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
2: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।
0: सपने।

0: सुमिलता संदेश कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें छोटू सुन तेनू बिस्मिलता संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के।

0: See you soon.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
8: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
7: Miss Clicks?
9: 100 लोगों ने click भी किया.
7: Customers कितने आए?
10: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
11: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
4: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
11: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
4: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
11: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
12: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
13: कितनी लंबी लिस्ट है?
12: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
13: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
14: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
15: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Phanasia.
16: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
17: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Phanasia Radio.

गाइज वी आर बैक. इट इज 8:42 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 10 बजे तक, पूरे 10 बजे तक. एंड लेट अस कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग यस्टरडे, व्हिच इज फिजिकल अट्रैक्शन. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन अ रिलेशनशिप, या इज इट इम्पोर्टेंट और इज इट नॉट इम्पोर्टेंट. नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल आर गोइंग टू बी सेइंग कि भाई ये तो सब्जेक्टिव है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन overall there is some kind of a general consensus I think all over the world. ek generic idea to hai, theek hai, sabke preferences alag hote hain, lekin sabka ek somewhat general consensus hota hai regarding what is defined as attractiveness across the world, essentially across different cultures. Now kal jaise humne baat kari thi, it is things like अट्रैक्टिवनेस जो भी चीज़ है, योर ब्रेन डिसाइड्स इन लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, लाइक 1/10 ऑफ अ सेकेंड. इट्स दैट क्विक टू डिसाइड कि नहीं, दिस थिंग इज अट्रैक्टिव और दिस इज नॉट अट्रैक्टिव. दूसरी चीज़, वी वर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द हेलो इफेक्ट. कई बार हम क्या कहते हैं, हम यू नो समटाइम्स यू आर जस्ट सो लॉस्ट इन समवन्स अट्रैक्टिवनेस कि आप उनके ऊपर एक कोई अपना परसेप्शन ही डाल देते हैं कि नहीं, यू प्रिज्यूम कि वो ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज अनदर थिंग दैट पीपल एसोसिएट. देन द अदर थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन. लाइक देर इज फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ कोर्स, देर इज सेक्शुअल, देर इज रोमांटिक, देर इज इमोशनल अट्रैक्शन, एंड देन देर इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन. Now, then we also, yesterday we talked about ki agar physical attraction is not just the visual also. I mean, more than just how the person is looking, whether they are thin, well-built, curvy, gore hai, ya unki sharp aankhe hai, sharp physical, like aankhe ki features hai, facial features hai, like nice jawline, You know those things. More than all of those things, there are other things which also draw people into their attractive qualities, such as ki aap kisi ki hansi pe itna fida ho gaye, like their energy, ya phir unki hansi itni magnanimous hai that you are just magnetized by the whole thing. Okay, then that is also technically a part of physical attraction. We can include that, even though there's it's much more than physical in a way, you know. Ya phir how someone listens to you talk, how someone listens to your conversation, or just, you know, the affection towards you, like just, you know, their hand on your back ki nahi koi baat nahi, theek ho jayega sab kuch, waise wohi ek sahara nahi dete kai log usse bhi attract ho jate. That I also, I mean, there is physical touch over there, so technically that is physical attraction as well. Now usse aage badhte hain to figure out what researchers or what people have basically said what we really find attractive. Now sirf agar shakal ki baat kare, there is actually research that suggests that people across the different cultures kind of tend to agree to a surprising degree of what or who is attractive. Things like facial symmetry, okay, मतलब उनका फेस सिमेट्रिकल होगा, दी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव भी नहीं. दिस द थिंग अबाउट बीइंग एवरेज, द थिंग अबाउट बीइंग एक्सेसिबल, दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड अट्रैक्टिव आल्सो. देन अदर थिंग्स आर लाइक हेल्थ क्यूज, यू नो, जिनके शक्ल पे मतलब यू नो देयर इज फटीग, नोबडी इज गोना गेट अट्रैक्टेड टू दैट बिकॉज देन दैट शोज either you're overworked or you're tired. Things like you're well rested, you take care of your face, you take care of your health, you have a good skin care, all of these things, they all play a role. Now here's the part that matters for your love life, okay, jo zyada din chalega. Agreement about faces in a lab ya kuch researchers and all, they don't tell us who a person really falls in love with. Most of us can point to someone famously, like most of us can, you know, point to someone who is like really, really famously gorgeous. Like, say, for example, Emma Watson. She's beautiful, okay? And we can say, sure, yeah, we know that she's pretty beautiful. Ya fir, what is that other girl's name who's just really come into the picture?
डकोटा जॉनसन या फिर ऐश्वर्या राय. अगर बॉलीवुड की बात करें ऐश्वर्या, वी कैन लुक एट द मैन से या टोटली दे आर टोटली ब्यूटिफुल. ओके, पॉपुलेशन लेवल पैटर्न्स आर नॉट पर्सनल डेस्टिनी और पर्सनल चॉइस. हाउएवर योर टेस्ट, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, आपकी जो चॉइस हैं, दैट इज बिल्ड फ्रॉम द हिस्ट्री अराउंड यू, द कल्चर अराउंड यू, आपके जो अटैचमेंट्स है. तो ज़्यादातर आप देखेंगे शादी के एड्स भी जब आते हैं ना क्लासिफाइड्स में, वी वॉन्ट अ टॉल थिन स्लिम फेयर गर्ल, मतलब ये तो गिवन ही है. वो क्यों, हमने कब दिमाग में डिसाइड कर लिया वी वॉन्ट अ फेयर गर्ल और अ फेयर बॉय? ऐसे फेयर बॉय फेयर गर्ल हर जगह होता है, ठीक है. द प्रेफरेंस फॉर एक यू नो अ फेयर कैंडिडेट, I honestly, I personally think that is from the colonization that is deep rooted within us. वो 300-400 साल की जो British colonization हमारी हुई थी, we have started assuming everything foreign is amazing. That's just my opinion. तो इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये गाना, नहीं तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, करते रहेंगे हम लोग तो.

हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आई एम गोना मेक यू थिंक अबाउट समथिंग. ओके, लेट्स पुट दिस बिग बिग बिग क्वेश्चन ऑन द टेबल, बिकॉज ये अगले 1 घंटे के लिए यही इसका थीम ही चलेगा. ठीक है, देर आर टू वेज टू थिंक अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन इन अ रिलेशनशिप. पहली चीज़ तो ये कि इट्स अ ड्राइवर, मतलब इट इज़ द मेन फ्यूल. दैट मीन्स द रीजन यू कीप चूजिंग योर पार्टनर एवरी सिंगल डे इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल अट्रैक्शन. दैट यू लुक एट योर पार्टनर एवरी सिंगल डे एंड यू लाइक, ओ माई गॉड, मेरी बीवी इतनी सुंदर है, वाओ, आई एम सो इन लव विथ हर. या फिर इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, ओ एम जी, माई हजबेंड इज सो हैंडसम, ही कुड बी लाइक अ मेल मॉडल, यू नो, सुपर सेक्सी, येस, ऑल ऑफ दैट. दैट इज वन ऑफ द मेन फ्यूल. ओके, दैट मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन इज योर ड्राइवर. स्ट्रांग अट्रैक्शन मेक्स द रिलेशनशिप गो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एंड विदाउट इट इंजन आपका बंद हो जाएगा. इफ योर पार्टनर पुट्स ऑन वेट या जो भी, देन इट्स गोना काइंड ऑफ डाई. नाउ इट कैन ईदर बी दिस और टू, इट्स अ गेट कीपर. गेट कीपर मतलब यू नीड अ सर्टन अमाउंट टू गेट थ्रू दैट डोर, टू लाइक ब्रेक इन टू दैट रिलेशनशिप विंडो इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक अ थ्रेश होल्ड. बट वंस यू आर इन दैट रिलेशनशिप, देन चाहे आपका पार्टनर, मे बी दे आर नॉट द हॉटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट नाउ, मे बी दे वर वेन यू स्टार्टेड डेटिंग दम एट फर्स्ट, बट देर आर अदर थिंग्स विच मेक यू चूज योर पार्टनर एवरी सिंगल डे. थिंग्स लाइक ट्रस्ट, थिंग्स लाइक काइंडनेस, थिंग्स लाइक ह्यूमर, थिंग्स लाइक जस्ट अ मैग्नेटिक कनेक्शन, यू नो, विच कैन बी वे मोर देन वॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन कैन एक्चुअली ऑफर टू यू. थिंग्स लाइक शेयर्ड वैल्यू, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो, चाहे फैमिली प्लानिंग के बारे में हो, चाहे आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में हो, नाउ थिंग्स लाइक दैट. सो यू डिसाइड कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. इज इट दैट इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, चाहे आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, या यू हैव बीन मैरिड फॉर 20 इयर्स, 30 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स, ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर. इज द फिजिकल अट्रैक्शन राइट देयर एज ए ड्राइवर और इज इट देयर एज अ गेट कीपर? थिंक अबाउट इट ड्यूरिंग दिस ब्रेक. हम 4 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं. थिंक अबाउट इट एंड देन टेल मी. माई ओन वर्किंग थ्योरी जो है, आई विल टेस्ट इट ऑल नाइट. ठीक है, एंड लेकिन मोस्टली मेरे को जो लगता है वो ये है कि फॉर मोस्ट पीपल इट्स द गेट कीपर, इट्स अ सेकेंड वन, विच मीन्स येस, यू स्टार्टेड विद द फिजिकल अट्रैक्शन इन द फर्स्ट प्लेस. हाउ एवर, मोस्ट पीपल देन इवेंचुअली लुक एट मोर देन जस्ट, यू नो, फिजिकल फीचर्स, एंड देर सो मच मोर काउंटिंग इन. बट या, एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस, हैज देयर ओन ओपिनियन, एंड या, थिंक अबाउट इट इन दिस सॉन्ग ब्रेक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए. इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे. फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन.
3: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस, गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइंड फॉर एवरी सेलिब्रेशन.
2: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग. मान्यवर मोहे, सेलिब्रेशन आपका, अंदाज खास.
4: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर, ऑस्टिन.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
9: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट. रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं. डेकोरेशंस का कलर,
10: नेक्स्ट क्वेश्चन.
2: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
10: याद नहीं.
2: बफे में क्या था?
10: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी.
11: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं. गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस. कॉल 972-905-5449. सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर.
2: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
10: उसके बाद फ्लेवर लाउंज.
2: 20 को गरबा का प्लान,
10: देन फ्लेवर लाउंज.
2: 1st को दिवाली मीटअप,
10: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज.
2: और आज कोई प्लान ही नहीं है,
10: तो चलो फ्लेवर लाउंज.
12: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
11: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख, या बस कुछ अच्छा खाने का मूड. डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को. इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर. खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
13: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
14: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
13: क्या मतलब?
14: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट, एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
13: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
14: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड, एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
15: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
16: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
17: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
16: Miss Clicks.
18: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
16: Customers कितने आए?
19: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
20: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की, अच्छा भला था गले में फंदा डाल लिया।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में?
0: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: लक साबुन का कमाल है ये, और क्या।
1: अच्छा वो आपका
0: हो गया।
1: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डालनी होती है तब क्यों कछुए की तरह गर्दन आगे कर देते?
0: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था ना कि इस गांव में आप भी हैं।
3: तो गाइस वो डायलॉग तो वहां चलते रहेंगे, लेकिन आपने सोच लिया ना कि आपकी रिलेशनशिप में अट्रैक्शन इज इट अ ड्राइवर और इज इट अ गेटकीपर? नाउ द शॉर्ट आंसर इज कि भाई मुझे क्या पता, वो आप ही को पता होगा आपकी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये गाना खत्म करते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स स्किप दीज डायलॉग्स।

0: अच्छा ये लड़की कौन है जो अभी अभी शगुन दे गई?
1: क्या तुमको भी शगुन चाहिए क्या?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत बोलती है ना, बहुत तेज है।
1: मिस्टर वो मेरी बेटी है।
0: बेटी? नहीं, दिमाग बहुत तेज है। गड़बड़ हो गई, मर गए यार। वैसे उनका शुभ नाम क्या है?
1: लड़के बारात में आए हो वरना परात में डाल के गुन देता।

0: बर्बादी।
1: भाई यार ये कई बार गाने में ना डायलॉग डाल देते हैं, आई डोंट लाइक इट। तो आगे बढ़ते हुए गाइज, बाय द वे इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर टैक्स सॉल्यूशंस देन रीच आउट टू एजी फिनटैक्स। दे ऑफर ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल एंड बुक कीपिंग एडवाइजरी सर्विसेज

एक 1960s में ना एक स्पीड डेटिंग इवेंट की एक स्टडी हुई थी, तो उस टाइम पे एट दैट इवेंट रिसर्चर्स ने अपने पार्टिसिपेंट्स को जो पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट इन अ इन योर पार्टनर, तो फिजिकल अट्रैक्शन जो चीज़ है बहुत लोगों ने कम ही बोला. दे ऑल सेड आई मीन द क्वेश्चन वॉज कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज अट्रैक्टिवनेस इन योर पार्टनर. तो उन्होंने कोई साफ से उन्होंने बोला नहीं, इट्स नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट. द पर्सन शुड हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एम्बिशन एंड द वे दे कैरी देमसेल्व्स, एंड दे गेव लाइक रियली कॉन्फिडेंट आंसर्स, विच इज़ वॉट यू वुड एक्सपेक्ट एनी नॉर्मल पर्सन टू से, राइट? आप किसी से बोलोगे कि भाई आपको आर यू गोइंग टू जस्ट गेट चूज अ पार्टनर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, तो सब लोग कहेंगे कि नहीं, बिकॉज वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ बींग जज्ड, यू नो, इन अ वे. एंड सब लोग कहेंगे कि नहीं, हम इतने शैलो नहीं हैं, आई मीन शक्ल सूरत डज नॉट मैटर, वॉट मैटर्स इज द पर्सन. एंड देन द रिसर्चर्स जो उस टाइम पे उन लोगों ने स्टडी करी थी, दे वॉच्ड हाउ व्हेन द पीपल दे मेट फेस टू फेस एंड हाउ दे काइंड ऑफ एक्चुअली चूज देयर पार्टनर्स. स्पीड डेटिंग इवेंट्स, अगर आपको नहीं पता, तो स्पीड डेटिंग इवेंट्स वो होती है जो एक टेबल के आसपास सब लोग बैठते हैं, लाइक गाइज सिट एंड द गर्ल सिट, एंड देन यू कीप स्विचिंग टेबल्स. मतलब आपको शायद 3 या 5 मिनट देते हैं पर टेबल पे, जस्ट टू हैव लाइक बेसिक कॉन्वर्सेशंस. इफ यू कनेक्ट विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, ग्रेट. इफ नॉट, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक योर डेटिंग एप्स, बट इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग लेफ्ट राइट, इट्स लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल. सो इट्स इंटरेस्टिंग. आई मीन आई हैव नेवर डन इट, बट आई हैव सीन वीडियोज ऑफ दैट. It seems interesting. I don't know fun or not, but it definitely seems interesting. However, आगे बढ़ते हैं. So then people they realized ki then the researchers watched who the partners actually liked when they met them face to face, and the so-called preferences जो उन्होंने बोला था कि नहीं ambition होना चाहिए, ये होना चाहिए, to predict what is real and all that, it kind of failed, you know. People who swore that personality is everything, जो लोग ज़्यादा बोलते गए ना कि नहीं, looks don't matter, personality is everything, ambition, they responded more to looks than just anyone else. जिन लोगों ने looks बोला वो तो looks पे ही जाते हैं, और जिन लोगों ने personality भी बोला वो भी looks पे जाते हैं, ठीक है? And the people who claimed to be just about the looks, they were also drawn to other qualities that they hadn't initially listed. तो हमारी जो लिस्ट है वो क्या फिक्शन है, मतलब क्या झूठ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आर लिस्ट्स आर अ

थ्योरी ऑफ आर सेल्व्स, हम लोग अपने दिमाग में जो थ्योरीज बनाते हैं, अपने सो कॉल्ड प्री कंसीव नोशंस एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट अ थ्योरी. एंड कई बार वो जो लिस्ट जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं ना, लाइक आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू इट, दे लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट इन अ गाय, 100K सैलरी होनी चाहिए, उसको ये गाड़ी चलानी चाहिए, वो इतना काइंड होना चाहिए, उसको मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, रोज जिम जाना चाहिए, नो पॉट बेली, सर पे सारे बाल होने चाहिए. आई मीन वी ऑल मेक दीज लिस्ट, हाउएवर वॉट यू लैंड अप डूइंग इज ऑफन गोइंग अगेंस्ट वॉट यू हैव सो कॉल्ड मेड अ लिस्ट, राइट? तो एनी वेज अभी के लिए मैं यहीं पे पॉज करी हूँ. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर द लवली लवली कॉल्स जो आप मेरी तरफ यू नो डायरेक्ट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग माई सॉन्ग. तो दिस वन्स फॉर यू.

एंड गाइज लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक में जाने वाले हैं एट 9:30. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले और डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले, बाय द वे, अगर आपके पास एक बिजनेस है DFW में एंड यू आर वंडरिंग हाउ टू गेट सेल्स इन द डोर एंड नॉट जस्ट क्लिक्स ऑन योर एड ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि कई बार क्लिक्स डोंट कन्वर्ट इनटू रियल सेल्स, राइट, देन यू नीड टू रीच आउट टू स्मार्ट रीच AI. दिस इज अ प्रोडक्ट दैट फनएशिया नेटवर्क हैज लॉन्च्ड. इट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स, इवन दोज विजिटिंग योर कंपेटिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑनलाइन ऑडियो. And then you can figure out what truly matters. Calls, bookings, offer redemptions, या फिर just clicks on your ad, okay? Ad तो Facebook, Instagram पे सभी डाल देते हैं, लेकिन not everything converts into actual sales. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers, right? So friends, जैसे हम बोल रहे थे, you know, theory after that speed dating वाला research. तो people, like I said, people who claimed that they were all about the personality judged also on the looks. And then the people who were like, nahi, who were, you know, pretty honest and were like, no, looks are very, very important. They also realized that looks were not the only thing that was important. They were looking at other things as well, like personality, connection and all of those. Here's another finding from that research. ये वाली रिसर्च बहुत कॉमन है और ये स्टेरियोटाइप भी बहुत कॉमन है. तो ये रिसर्च ने स्टेरियोटाइप को थोड़ा सा अलग से प्रूव किया, विच इज कि मेन व्हेन दे चूज देयर पार्टनर्स दे ऑलवेज थिंक अबाउट लुक्स एंड वेयर एज वुमेन दे ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेटस और इकोनॉमिक पोजिशन और सोशल पोजिशन, ऑल ऑफ दैट. एंड दिस इज नॉट रियली ट्रू. दे रियलाइज आफ्टर द रिसर्च कि ये वाली चीज जो है दैट इज नॉट रियली ट्रू. And this status held up much less than what people expected when it came to who they actually liked in the room. So, kya hua research mein? Difference in what people actually said that they wanted versus what they were actually happening was huge, huge, huge. Now, so what did predict a spark? Jo so-called spark, jo hum log baat karte na, mostly it's something that's really hard to put on a list. मतलब उसको tangibly हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाली चीज थी जो हमें spark कर गई and all that. Researchers call it like a unique relationship specific attraction. Now, not कि ये वाला person ज़्यादा attractive है so I'm interested in him, but something like, oh, do we actually click together? कुछ है हमारे बीच में, कुछ click करने वाला. So that was more important. We will talk more about this after the song.

guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie, and you are still listening to Funasia Radio 104.9 FM. और अगर आप भूले नहीं हैं तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं 30th अक्टूबर को आई एम परफॉर्मिंग विद माय बैंड एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन. सो मेक श्योर यू आर देयर. इट्स गोना बी एट 7 o'clock इन द इवनिंग एंड इट्स अ सिंग अलोंग इवेंट व्हिच मींस यू कैन सिंग अलोंग विद द बैंड एंड मी when the performance is going on. Yes, so 30th October, don't forget the date, save the date in your calendar. So guys, main aapke saath rehne wali hoon bas 15 minute aur, and without further ado, let's go ahead and finish our discussion for today. Theek hai, agar khatam nahi hua to hum kal fir se karenge. Don't worry, I'll be here all the way until Thursday. To hum jaise baat kar rahe the ki what we think, what we want, we very often do exactly opposite of that. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो थ्योरी है वो सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है. आपको आवाज आ रही है ना मेरी? मेरा माइक थोड़ा दूर है, मैं थोड़ा इसको पास कर लेती हूँ. ठीक है, द स्टेरियोटाइप ऑल्सो कि मैन आर ओनली अबाउट द लुक्स एंड वुमेन आर ओनली अबाउट द सोशल स्टेटस एंड द इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट. सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. आई मीन, वॉट इज दैट स्पार्क जिसके बारे में बात कर रहे थे? इट्स बेसिकली मैचिंग पार्टनर. ठीक है, देर इज अ थ्योरी, इट्स कॉल्ड द मैचिंग हाइपोथेसिस. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी ऑफन एंड अप with those kind of people who are kind of in the same alignment ya fir same so-called similarity, okay, similarity with ourselves. So for example, if as a woman, and I know I shouldn't put numbers and all that, it's kind of like so primitive, however I'm just trying to give an example, so roll with me here. Okay, if as a woman you are like a 7, okay, then you will end up with a 7 who's a guy as well. Similarly, agar aapki mental sthiti mein wo hai that you're constantly living in stress, then you will probably end up with a partner who's also constantly living in stress. Now, whether that's a good thing or not a good thing, that completely depends, I mean, on you guys. However, many studies find that couples tend to be similar in rated attractiveness and mental positioning as well, along with similarity in age, education and background. But the picture, jo final picture hai, it's a lot messier than what the slogan actually says. Iska matlab kya hai ki research finds that similarity jo hai, it's modest. Matlab somewhat similar hai, puri tarah similar nahi hai. लेकिन अदर क्वालिटीज़ लाइक वॉर्म्थ, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है फॉर एग्जांपल, या फिर स्टेटस, ह्यूमर, और जस्ट बीइंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम कैन ऑफन यू नो बैलेंस द इक्वेशंस. तो अगर ये अट्रैक्टिवनेस नहीं है तो मे बी दे हैव द सेम सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके, और मे बी दे आर द इन द सेम इकोनॉमिक स्टेटस और समथिंग लाइक दैट. ओके, पीपल डू अ ट्रेड ऑफ. Somebody might not be a conventional head turner, matlab they might not be the hottest person in the room, but still be extremely, extremely attractive to the other person, simply because maybe they have the same goals, like financial goals. Maybe unko bhi, I don't know, kuch achieve karna hai life mein is tarah se. So those things also matter a lot, okay? Attraction is not simply about कि कौन अवेलेबल है, किसकी शक्ल सूरत अच्छी है, या हु इज इंटरेस्टेड इन अस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल वी परस्यू एंड वेदर और नॉट दे माइट से येस. इट्स नॉट रोमांटिक पोएट्री, बट अट्रैक्टिवनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ रियल फैक्टर्स, यू नो. सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स. वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट सॉन्ग.

गाइज, मैं आपसे बातें अब कल करूंगी, मेरे जाने का टाइम हो गया है. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द शो, एंड आई विल टॉक टू यू सून. ओके, बाय.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
9: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
10: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
11: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
1: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट, वेयर कैन वी ईट नाउ?
4: डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज फन पिज्जा Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
6: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
7: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
6: Miss clicks.
8: 100 logon ne click bhi kiya.
6: Customers kitne aaye?
9: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
10: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
11: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
12: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Phanasia Radio par.

0: छानी।
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

निशान है फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान। ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करें वाओ वाओ, और लड़की तेरी ताजमहल सी हम करें वाओ वाओ।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फन एशिया रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर. अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
2: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ जवाब।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. Don't change that dial. Keep it right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

हम इस मूल से उठकर अगले मूल चले, हम इस मूल से उठकर अगले मूल चले, उनको शायद देर लगेगी आने में।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।
1: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
2: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
1: Miss Clicks?
3: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
1: Customers कितने आए?
4: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
0: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
5: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो एड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
6: Phanasia Network के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phanasia.net. Phanasia Network, one network, many languages and maximum reach.
7: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी जर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनी शो 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन वॉट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

favorite music on your favorite radio. Bop, bop, bop, bop, bop.

अब व्हाट इज अप, क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। लेट्स डू इट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.
1: Ajibot

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस। इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस इन मीडिया, सेल्स or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो, लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 Karat Pure on 104.9 FM.

0: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
1: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
0: 20 को गरबा का प्लान,
2: देन फ्लेवर लाउंज,
0: 1st को दिवाली मीटअप,
2: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज।
0: और आज कोई प्लान ही नहीं है,
2: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
3: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए,
4: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
5: तुझे देख देख
0: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
4: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
0: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
4: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
0: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
6: Jag ghume aathare jaisa na koi.
7: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: Adeo Mona Lisa!

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Bindas bolo. Bolo bolo bolo bindas bolo.
4: Jab gaana bole bindas to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas Marvin Das Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
5: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
6: Your favorite music on your favorite radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
10: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
9: When is it?
10: Thursday, October 29th, Friday, October 30th. And Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
9: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
11: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
12: Agar kisi cheez ko dil se chaho.
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
14: डील कहाँ?
13: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
14: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
15: दिल की बात किससे कहें?
16: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
17: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
18: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
17: 20 को गरबा का प्लान,
18: देन फ्लेवर लाउंज,
17: 1st को दिवाली मीटअप,
18: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज.
17: और आज कोई प्लान ही नहीं है
18: तो चलो फ्लेवर लाउंज.
19: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
16: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को. इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर. खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
20: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
21: That garba was totally worth it. We had so much fun.
22: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
21: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
23: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
24: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
25: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
24: Miss Clicks?
26: 100 logon ne click bhi kiya.
24: Customers kitne aaye?
27: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
28: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. measure calls, bookings, redemptions, and actual visits, visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
0: Diwali Bazaar ho ya food stall, apne business ko dijiye festive spotlight. Book your booth at the South Asian Food Festival by Bindaas Services. November 1st, The Sound, Kapel. Call Marvin, 972-302-7012.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the show and let's get started with it on this lovely Wednesday morning. It is the 14th of October. Sabse pehle tareef us super wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि. आदि शक्ति श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कूष्मांडा है. अपने उदार से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष मांडा कहलाया जाता है और इस कूष्मांडा देवी के नाम से ये पुकारा जाता है कि नवरात्रि के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है. श्री कूष्मांडा के पूजन से अनाहत चक्र जागृति की सिद्धियां प्राप्त होती हैं. श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोग नष्ट हो जाते हैं और इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है. द फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि एंड दैट इज डेडिकेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ माता कूष्मांडा. नंबर हियर इन द स्टूडियोज इज 972-235-5555 एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम टुडे. And I'll take your calls.

जानकारी के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्दी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और SPCT आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
3: क्या?
4: Wake up!
5: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी कहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
6: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
7: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
8: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
7: When is it?
8: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
7: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
9: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
10: Doors clean.
11: Check.
10: Windows clean.
11: Check.
10: Kitchen clean.
11: Check.
10: Air ducts clean.
11: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
12: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
14: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
13: It's the time to catch up.
15: Dil ki baat kisse kahe?
16: Pandit Gurudev se. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
17: बेटा 95% आए?
18: हाँ मम्मी.
17: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
19: मेरा?
17: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
19: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
22: Let's get started with this final hour of our program on this lovely Wednesday morning. It's the 14th of October today. And for those of you observing Navratri, ladies and gentlemen, it's the fourth day of Navratri. Adi Shakti Shri Durga ka chaturth roop Shri Kushmanda hai. Apne udar se and arthat brahmand ko utpan karne ke karan, inhe kaha jata hai Devi Kushmanda. नवरात्रि के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। श्री कूष्मांडा के पूजन से अनाहत चक्र जागृति की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और इनकी भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इट इज माँ कूष्मांडा दैट वी आर प्रेइंग टू टुडे ऑन दिस फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि।

0: The atmosphere attempting to make it feel actually like fall across much of the United States, repeatedly thwarting what's about to change in a major way. Temperatures will plummet to their lowest levels since spring for many who are east of the Rockies later this week, as a potent cold front slices across the country, and this dramatic pattern flip won't come a moment too soon for some still roasting under summer-like heat. Dozens of locations in central and southern United States soaring to record high temperatures yesterday, but the incoming front is going to drag those highs down by more than 30 degrees in many areas by Friday and Saturday. Some spots in the northern U.S. this weekend could flirt with freezing temperatures overnight for the first time since spring too, and the cold front could also ramp up a multi-day flood threat for the plains and some parts of Texas. Things will have to get worse before they get better. Summer-like heat peaking today in the central U.S. with highs in the 90s forecast as far north as Illinois and Indiana, and we are going to see fall though finally here on Friday morning.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: Mandir. DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
3: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Mahamangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
2: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshar Abhyasam.
3: October 17th, Mata Ki Chauki.
2: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
3: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लान।

0: हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
2: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
3: स्टॉप, फेस्टिव फैशन चेक. नवरात्रि के आउटफिट्स रेडी है?
4: दो चनिया चोली है, मिक्स एंड मैच कर लूंगी.
3: फैशन वायलेशन, सेम आउटफिट को 9 रात ओवरटाइम.
4: तो सॉल्यूशन?
5: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल. एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि. प्लानिंग अ वेडिंग? डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस. कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर jyotikapateldesigns.com. इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
10: इसलिए डॉक्टर फरहाद has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and 2-time Academy Award winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
16: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
17: Devi or Sajjano, a little request. Think big.

कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। वेदर जहाँ तक का सवाल है, वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है और शायद आपके दिन में भी। लेकिन दिन में जो है, जो भी वेदर रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, यानी कि अगर नरम गरम चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए हम आपकी थोड़ी दूर तक मदद कर सकते हैं विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी ब्रिंग एंड ऑफ कोर्स द म्यूज़िक। लेकिन जहाँ तक वेदर का सवाल है, झेलना तो पड़ेगा ही। Another warm day that we have started with, लेकिन काफ़ी ठंडा मौसम आने वाला है, जिसके बारे में अगली सेगमेंट में डिटेल में बताया जाएगा। पहले दुआ सलाम तो कर लें आप लोगों के साथ। हेलो जी, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। घड़ी में हमारे बजे हैं 10:10 और आज की तारीख है 14th of October। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर दैट वी आर ऑन एंड You know what? We'll make sure that it is just amazing. This is Gapshap Gali with me too.

This is Gupshup Gali with Me Too. Studio ka number aap jante ho, 972-235-5555. Hamare mood ke saath, chahe to aap flow karte chalo, ya to apne mood ka kuch hisab hame bhi bataiye. Yani ki, aapke pasand ke gaane agar aap sunna chahte hain, mood badalna chahte hain right now, whatever I'm playing, the vibe that if you want to change, aapko call karna hi padega. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. और अगर आपको अपने ब्रांड को, सोशल मीडिया पोस्ट को और स्ट्रॉन्ग और रिजल्ट ओरिएंटेड और रीच बढ़ानी है, अटेंशन चाहिए आपको ऑन सोशल मीडिया पोस्ट आपके ब्रांड के लिए, तो एक नाम जो आपको याद रहना चाहिए और वो हम याद दिला देते हैं, रिलेटिव मीडिया एंड फाइनेंशियल नेटवर्क आपके लिए मीडिया एक्सपर्टीज लेकर आया है सोशल मीडिया पर. और ये रिलेटिव मीडिया आप ही के लिए वेरी स्पेशली हमने सोचा है. स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स और आई कैचिंग ग्राफिक्स with मतलब just the right kind of captions and content distribution और amplification कैसे किया जाता है, ये आप जाने relative media के साथ. So financial radio, digital and community platforms, relative media gives your business that complete content solution all in one place, ladies and gentlemen. Basically, अगर आपको better content ideas चाहिए, stronger visibility चाहिए, bigger audience चाहिए, तो आपके लिए है relative मीडिया, जो आपके ब्रांड का नाम चकाचक चमकाएगा. 4694243188 इज दैट नंबर. और आप अपने कंटेंट ऑडिट के लिए जरूर बुक करें एक अपॉइंटमेंट. रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फनेशिया नेटवर्क, योर कंटेंट, आर रीच, बिगर इंपैक्ट.

0: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
1: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com।
2: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
3: नेक्स्ट क्वेश्चन।
2: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
3: याद नहीं।
2: बफे में क्या था?
3: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
2: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव October 11th to 20th।
1: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
2: October 16th, 17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
1: October 17th माता की चौकी।
2: October 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
1: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111.
2: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
4: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

लू टुडे, क्योंकि नींद बड़ी आ रही है आज मुझे। ये मौसम का ये प्रॉब्लम है कि मेरी मेरे पूरे पूरी नींद घंटों की जो मिली है वो मिली नहीं है मुझे पूरी। तो आई एम ब्लू ऑल्सो एंड आई एम वेरी रेड, यू नो, विथ एंगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा पता हो कि भाई आपको नींद पूरी करने के लिए और यू नो अगला दिन अच्छे से चलाने के लिए आपको नींद अच्छी चाहिए होती है, तो क्यों नहीं हम 1-2 घंटे पहले सो जाते हैं? क्यों वो 12 बजे तक जगना ही होता है? हम इंसान, वो जो ब्रीड है ना, जो कि रात जगती है, काफ़ी लेट तक जगती है, उनके लिए ये काफ़ी रिलेटेबल होगा। बाकी तो आप, बाकी सब जो हो वो यू आर गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स, व्हाट कैन आई से, गुड फोक्स देयर लिसनिंग टू अस ऑन फन नेशन नेटवर्क। दिस इज गपशप गली विथ मी टू। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मौसम का हाल भले अभी लाल हो, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी ब्लू होने वाला है, यानी कि ठंडा होने वाला है। द अनयूजली वार्म अक्टूबर वेदर विल कंटिन्यू इन नॉर्थ टेक्सस टूडे। हाईज विल बी इन दी अपर 80s टू मिड 90s विद अ हीट इंडेक्स अराउंड 100। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेन चांसेस जो है हमारे मोस्टली वेस्ट में दिख रहा है एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ टेक्सस, ऑल दो स्ट्रे शावर और थंडरस्टॉर्म कैन नॉट बी रूल्ड आउट टू द साउथ ईस्ट एज वेल। वेल, द स्ट्रांगेस्ट कोल्ड फ्रंट ऑफ द फॉल सो फार ये आने वाला है कल शाम को, और रात तक काफ़ी विंडी भी हो जाएगा और मच कूलर वेदर दैट वी विल सी। देर इज अ लो चांस ऑफ शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स टुमारो नाइट। हाउएवर, द बिगर स्टोरी विल बी द बिग ड्रॉप इन टेम्परेचर्स जो कि हम फ्राइडे को फील करने वाले हैं। अर्ली फ्राइडे मॉर्निंग तो मेरे ख्याल से 40s में भी आप टेम्परेचर देखने वाले हो, बाकी 60s, यू नो, हायर 60s टू नियर 70 टेम्परेचर दैट यू गोना सी ऑन फ्राइडे, और बहुत गस्टी होने वाला है, 40 miles per hour का विंड गस्ट जो आप देख सकते हो। वेल, स्प्लेंडेड वीकेंड वेदर इज एक्सपेक्टेड विद सैटरडेज हाई स्टेइंग इन द 60s एंड अ मॉर्निंग लो ऑफ अराउंड 50। वेलकम फॉल वेदर स्टार्टिंग दिस फ्राइडे लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू अनदर ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट। वो पिछला गाना कामी के रिक्वेस्ट पे और ये अगला गाना जीशान की रिक्वेस्ट पे।

0: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई खलिश आपके है, कोई नैगिंग एक आपके है, कुछ इमोशनल आज आप हो रहे हो, कुछ दिन खराब चल रहा हो, तो आपके लिए अगले सेगमेंट में कुछ इसी चीज़ को लेके बातचीत करेंगे. लेकिन फिलहाल आपके लिए ना ये है कि तबीयत को लेके अगर कोई खलिश हो तो ज़रूर जाएं टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक, क्योंकि 13 ईयर्स से ये हमारी कम्युनिटी को सर्व करते आए हैं. और एक ब्रांड न्यू सेकेंड फ्रिस्को का लोकेशन जो है ये है लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. और लुनॉक्सी मेडिकल आपके लिए ना प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज सारी लेकर आती हैं एक ही जगह पर. एंड दैट्स लुनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को. सातों दिन खुले रहते हैं, यानी कि पूरे हफ्ते खुले रहते हैं, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक. और यहाँ पे है कि आप यू कैन वॉक इन एनी टाइम रियली, एंड दैट is one of the reasons you must choose Lunoxy Medical. और केवल इतना ही नहीं, minimal wait time है और physician led care है, यानी कि वो retail clinic model नहीं है. हर किसी को personal attention मिलेगा, हर patient को अपना personal attention मिलेगा. Urgent care plus primary care all under one roof. What can one ask for, right? And as I said, walk-in visits, no appointment needed. And it is Lunoxy Medical in Frisco. पता है अभी 30 सेकंड रह गए हैं हमारी घड़ी में. मुझे नहीं लगता है कि मैं ये अगला जो रिक्वेस्ट है मैं वो प्ले कर पाऊंगी राहत साहब की आवाज़ में. तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी बातचीत यहीं पे जारी रखते हैं, और वापस आने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद, लेट्स यू नो प्ले दैट राहत साहब सॉन्ग, कंसिडरिंग दैट ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म दिस फ्राइडे. इट इज़ अमेजिंग, क्योंकि गाना एक रेडियो पर सुनना वर्सेज लाइव सुनना बहुत फ़र्क होता है.
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: दिल की बात किससे कहें?
5: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. Call 469-581-1777. That's 469-581-1777. Pandit Gurudev, aaiye, apni baat kahiye.
6: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
7: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
6: Miss Clicks.
8: 100 logon ne click bhi kiya.
6: Customers kitne aaye?
9: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
10: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.

0: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
1: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
0: अक्टूबर 16th, 17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
1: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
0: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
1: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111। It's the time to clock out.
2: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice. Is Diwali, Koppal mein dekhiye ek bhavya nazara. Ganesha, Lakshmi aur Saraswati ke grand LED cutouts. Aur pehli baar Ram Leela. South Asian Food Festival by Bindas Services. November 1st, The Sound, Koppal.
3: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

And Rahat Sahab will be live in concert with his son Shahzaman Ali Khan or Once Upon a Time World Tour 2026. This is happening this Friday, October 16th, Comerica Center in Frisco is the location, ladies and gentlemen. And 8:30, darwaze khul jayenge aapke liye to enjoy and make a night that will be completely unforgettable. Wo kawali, Sufi, Bollywood hits or timeless melodies ke saath Rahat Sahab hum sab ke beech. Once again, thank you, ladies and gentlemen, for tuning into Funisha Network. Ye hai Gapshap Gali with me too. Kuch, you know, aise kuch khalish wale dinon ki baat karne wali thi na. To bas wahin se hum baatein aage badhate hain. Aur kuch din hote na, jo matlab subah se kuch gadbad chal rahi hoti hai. Right from the moment you wake up, maybe. Ye wo subah hoti hai jo बेड से उतरते ही यू नो बेड का कॉर्नर आपके पैर पे लग जाए और वो जो दर्द होता है वो दर्द शाम तक आप फील करते हो. नॉट द फिजिकल पेन आई एम टेलिंग यू, बट जिस एक के बाद एक कुछ चीज़ें होती रहती हैं. मिजरेबल ट्रैफिक होगा वापस आते वक्त, क्या कुछ कॉफ़ी स्पिल हो गया, मतलब एक के बाद एक चीज़ें होती रहेंगी. वर्क ईमेल्स एक्सप्लोड कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और वो दिन जनरली मतलब ख़राब से बदतर होता जाता है, बद से बदतर होता जाता है ना. वैसे वाले दिन की बात कर रही हूँ. एंड जस्ट व्हेन यू थिंक द वर्स्ट हैज़ फाइनली पास्ड, आपको फिर मिलता है कुछ अपना एक फ़ोन कॉल जो कि आपको आपका मूड और ख़राब कर देगा. कुल मिला के ख़राब दिन, दैट्स वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऐसे वक्त पर दिल करता है कि बस एक फ़ास्ट फॉरवर्ड वाला बटन दबाओ और अगले दिन पे पहुंच जाओ, है ना. ऐसा होता नहीं है. तो अब अगर ऐसा हो नहीं सकता तो क्या किया जा सकता है? वेल, टेकिंग द गुड विद द बैड इज़ डेफिनेटली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, मानते हैं कि नहीं. बट वॉट इज़ एब्सोल्यूटली विद इन आर कंट्रोल इज़ हाउ वी चूज़ टू एंगेज विद द बैड. यू नो, चाहे हालत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हमारा रिएक्शन और हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है. वी कैन ऑलवेज ट्राई लर्न हाउ टू पिविट टू एन यू नो मोर एम्पावरिंग हेड स्पेस, इफ आई माइट से दैट, इवन व्हेन थिंग्स फील लाइक दे आर कम्प्लीटली फॉलिंग अपार्ट. इसीलिए जब दिन बुरा जा रहा हो ना, तो बस थोड़ा रुकिए, एक सच में लंबी सी सांस लीजिए और अपने इमोशंस का चार्ज वापस अपने हाथ में लीजिए. दैट इज़ वॉट इज एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट, एंड देर आर सो मेनी वेज टू डू इट. रियली, इफ़ यू विश टू डू इट, यू विल फाइंड ए वे फॉर श्योर. एक तरीका म्यूज़िक का है, और वो म्यूज़िक का जो तरीका है ना, बड़ा क्लीशेड लगता है सुनने में, लेकिन वो तरीका मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कैसे रिफाइन किया जाए. राइट आफ्टर दिस ट्रैक. नाउ दिस सेगमेंट इज दिस डे अनदर ईयर. अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ ऐसी फिल्में नहीं मिली जो आज की रिलीज आज के दिन के साथ मैं आपको बता सकूँ. नथिंग मेजर दैट रिलीज ऑन अक्टूबर 14th. सो देयरफॉर वी थॉट वील सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दिस एक्टर, जिनको शायद उतना प्रोमिनेंस नहीं मिला है बॉलीवुड में, लेकिन ये कुछ फिल्में उन्होंने जो की हैं उससे उनका नाम हमेशा रहेगा. परमीत सेठी की बात कर रही हूँ. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट ही गॉट इन हिज फिल्मोग्राफी, इट इज फॉर द फिल्म दिल चले. एंड आई एम गोइंग टू टोटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस अनु मलिक नंबर फॉर ऑल ऑफ यू.

It is Parmeet Sethi's birthday today. Wishing him all the happiness in the world. और ये जो गाना उनको मिला था, actually it's such a beautiful song and a good job, good opportunity to register it in his name. It is this song that was created by Anu Malik और Kumar Sanu की आवाज़ थी. ये जो गाने जो actors को मिलते हैं ना, ये भी good fortune ही है ना, क्योंकि ये कितने repeat पे चलते रहते हैं हमारे screens पे और हमारे दिमाग के स्क्रीन पे भी. तो यस, इस गाने पे नाम लिखा है परमीत सेठी का और आज के दिन पर भी उनका नाम लिखा है. इट इज हिज बर्थडे. विशिंग हिम लोड्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. और यही विश करना चाहते हैं टू गौतम गंभीर हु टर्न्ड 45 टुडे. और उनको भी बहुत सारी विशेस एंड वांट टू रीइटरेट व्हाट रैना सेड, ए फाइटर ऑन द फील्ड, ए चैंपियन एट हार्ट एंड अ मैन हु हैज ऑलवेज स्टूड टॉल फॉर इंडियन क्रिकेट. द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट, इट इज गौतम गंभीरस बर्थडे टुडे. हाँ, मुझे पता है कि हमारी कुछ बातें चल रही थी, वो बातें हम आगे कंटिन्यूड रखेंगे.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
7: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
10: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
9: Aakhir kya hai is biryani mein?
10: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: Are you trying to protect your business, retain top talent and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
17: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
18: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
19: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio. What?

आज कुछ ना बैड डे के बारे में बात कर रही थी पिछले सेगमेंट में, बस वही बात कंटिन्यूड रखने वाली हूँ इस सेगमेंट में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे हर मिनट पे एक कोई नए लिसनर आते हैं, मे बी नए लिसनर या जो अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वार्म वेलकम आप लोगों को, दिस इज गपशप गली विद मी टू, एंड आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका खराब दिन चल रहा है, मूड अच्छा नहीं है, तो भाई आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे कई सारे हैं हमारे लिसनर्स में। सो रिमेंबर दैट यू आर द मेन कैरेक्टर of your own life, and not only that, you are the director calling all the shots. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने bad day को आप भी इसी वक्त cut कहें और positive एक vibe के साथ एक direction एक अलग पकड़ने की कोशिश करें with Fun Asia Network. और ये है गपशप गली with me too, bringing you a perfect little fix for those incredibly tough days. क्योंकि जब दिन बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा हो ना, तब एडवाइसेस मान लेनी चाहिए जो आपके अपनों के तरफ से आए, और हम आपके अपने ही हैं। तो सबसे बेस्ट और क्विक थेरेपी जो होता है वो आपके फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट में होता है, और ये बहुत बहुत क्लीशेड बात लग सकती है आपको, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि हम थोड़ा सा और रिफाइन करने वाले हैं। वॉट इज़ द वन स्पेसिफिक ट्यून दैट ऑलवेज instantly boosts your mood, or that one artist who feels like your absolute musical soulmate? Take a moment to really reflect on why this specific music consistently brings you so much of joy. क्या ये सिंगर की पावरफुल वॉइस है जो आपको आपको वो काम देती है, या हार्ट टचिंग कुछ लिरिक्स हैं उस पर्टिकुलर गाने के जो आपको बहुत एक दिमाग में आपके पीस लेकर आती है, या फिर उस गाने का एक कुछ थम्पिंग बीट या फिर बेस है जो आपके मूड को बिल्कुल सुपर एनर्जेटिक कर देता है? सो कनेक्ट टू दोज मैजिकल कॉम्पोनेंट्स दैट अपलिफ्ट योर स्पिरिट एंड गिव यू गूज़बम्प्स, बिकॉज ग्रेट आर्ट हैज़ द इनक्रेडिबल पावर टू सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म योर माइंड सेट। और पता है, साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली अग्री करता है। स्टडीज हैव एक्चुअली फाउंड दैट लिसनिंग टू म्यूजिक दैट यू एंजॉय, माइंड यू नॉट एनी म्यूजिक, म्यूजिक जो आपको बेहद अच्छा लगा, दैट वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ प्रेशर एंड यू नो एड्स टू दैट प्लेजर causing substances in your brain, जैसे कि melatonin. साथ ही ये आपकी body में stress causing hormones की production को भी dramatically decrease करता है, आप believe करें या ना करें. So go ahead and make a mood playlist with your very own, you know, sort of songs that you would like to add to that playlist. क्योंकि हर mood के लिए दवा या दारू यानी कि treatment अलग होता है. So make sure you know your zealers and healers in music as well. और आप ऐसा एक playlist बनाइए, फिर देखिए इसका magic. मैं आपको बताऊंगी कि कुछ Hollywood और Bollywood के actors हैं जो इसी magic का इस्तेमाल करते हैं. Let's talk about that right after this song. This is Gapshap Gali with me too.

हर मर्ज के लिए एक खास दवा होती है और हर मूड के लिए एक खास म्यूजिक पिल होता है, और उसी म्यूजिक पिल के बारे में बात करने वाली हूँ, कर रही थी एक्चुअली, और उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहती हूँ कि हर मूड के लिए ना अपने कुछ गाने होते हैं, और ख़राब मूड के लिए भी कुछ अच्छे गानों का ऐसा प्लेलिस्ट बनाइए कि जो आपके मूड को बेहतर कर सके. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रिफाइन योर लिस्ट प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन योर मूड्स, कि जब ज़रूरत पड़े तो बस वो उठाया और लगाया और सब मस्त हो गया. तो इफ़ यू आर हैविंग नॉट सो गुड डे टुडे, इट इज़ वन ऑफ दोज डेज कि आप अपने प्लेलिस्ट को ऑन करें या हम तक अपने गाने की फरमाइश पहुंचाएं और हम आपका वो मूड लिफ्टर जो है म्यूज़िक प्ले करें. और यहीं पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये चीज़ ना एक्चुअली हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोगों ने भी अपनाया है कि वो जब कैरेक्टर्स में घुसना होता है इतना चैलेंजिंग होता होगा टू गेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट. तो आपने सुना होगा शायद कि कई लोग ना यू नो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं टू गेट इनटू द कैरेक्टर, कि वो परफ्यूम लगाया तो उस कैरेक्टर में घुसने में उनको आसानी होती है. यू नो वैसे ही कुछ गानों के साथ भी उनका एसोसिएशन होता है. कुछ एक्टर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब वो गाना लगा लेते हैं ना, वो बार बार रिपीट पर सुनते रहते हैं ना, तो उनको एक उस मूड में जाने में एक ईज होता है. और वो ईज रणवीर सिंह भी अपने एक फिल्म के लिए उन्होंने कहा था कि जब उन्हें संजय लीला भंसाली की जब पद्मावत वो शूट कर रहे थे तो इतना डार्क कैरेक्टर था, उसके लिए उन्होंने अपना एक अलग ही एक सेंसरी ट्रिगर बनाया था, एक म्यूजिक और एक सेंट का इस्तेमाल किया था टू गेट इन टू द कैरेक्टर, द अग्रेसिव रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन संजय लीला भंसाली पद्मावत. रणवीर फेमसली लॉक्ड हिमसेल्फ अवे विद अ हाईली क्यूरेटेड डार्क म्यूजिक प्लेलिस्ट एंड वोर अ वेरी स्पेसिफिक हैवी ट्रेडिशनल इतर एवरी सिंगल डे ऑन सेट. ये बात मतलब कई लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ये बात माना है कि हमारे स्मेल और हियरिंग का हमारी मेमोरी और इमोशंस के साथ बहुत डीप कनेक्शन होता है. सो द नेक्स्ट टाइम यू नीड एन इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट या मूड लिफ्टर, तो आप अपने उस सिग्नेचर म्यूजिक पे जाने में आपको आसानी हो, इसके लिए एक प्ले लिस्ट ज़रूर याद रखें. और वो याद रखें कि आपको अगर अपने बैड डेज में एक अच्छा गाना जो कि आपके अच्छे हॉर्मोन्स को ट्रिगर कर सके, अगर वो चाहिए तो वो गाना स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि वो गाना आपको क्यों अच्छा लगता है, व्हाई इट कनेक्ट्स टू यू, एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ रिफाइन द वे टू हैप्पीनेस, आई प्रॉमिस. वेल देर आर मेनी अदर वेज, बट म्यूजिक का एक ये हाथ पकड़ के तो देखिए. फनीशा नेटवर्क इज ऑलवेज विथ यू.

Listen, this part of my show is brought to you by AG FinTech. सबसे पहले तो उनकी वेबसाइट पे जाएं and try and find out how they can help you. मैं आपको बता सकती हूँ कि they offer trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. नंबर बता देती हूँ 4699429888. हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी बिजनेस से सर्विस चाहिए ना, तो जब भी फोन नंबर आपको मिले तो सबसे पहले तो बात करिए. वो वाइब चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. agfintechs.com पे सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए रेडी हैं. जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट एंड सी हाउ एजी ग्रांधी एंड हिज टीम कैन हेल्प यू. अनिल ग्रांधी एंड हिज टीम कैन हेल्प यू. सपोर्टेड बाय अ प्रोफेशनल टीम ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स स्पेशलिस्ट एंड सर्टिफाइड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स. मिस्टर ग्रांधी एंड AG FinTechs offer advisory services always guided by the core values of integrity, responsibility and value addition. Once again, agfintechs.com, inki website. This is Gupshup Gali with me too.

दिस इज गपशप गली विद मी टू. घड़ी मिला लीजिए, 11:30 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. इट इज एग्जैक्टली 27 मिनट्स past 11 बाय द स्टूडियो क्लॉक. 14th of October इट इज, एंड होप यू आर हैविंग ए फैंटास्टिक वेंसडे. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

दिस इज द नवरात्रि सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन 11:30 to 12 के बीच वेरी स्पेशली फॉर ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि लेडीज एंड जेंटलमैन. आज day 4 के दिन बहुत एक खास दिन जहाँ पे कि डेडिकेटेड होता है माँ कुष्मंडा को और माँ कुष्मंडा द रेडिएंट गॉडेस हु इज बिलीव टू हैव क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स विद जस्ट ए सिंपल स्वीट वार्म स्माइल. बस ऐसे ही आपकी जिंदगी पे उनकी चमक बनी रहे, उनकी स्माइल बनी रहे. दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू विश टू ईच वन ऑफ यू जो सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए और जो नहीं करते उनके लिए भी, कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली छाई रहे. दैट इज द नवरात्रि विशेज दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर फनीशिया टीम हियर. और माँ कुष्मंडा, इनकी डिवाइन एनर्जी ना हमें सिखाती है कि एक छोटी सी पॉजिटिव सोच किस तरह से हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बदल सकती है. इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक दिन का अच्छा या बुरा होना टोटली हमारे हाथ में है. एंड यू नो माँ कुष्मंडा हमें सिखाती हैं, शी कैरीज द एब्सोल्यूट पावर एंड वार्म्थ ऑफ द सन, ब्रिंगिंग लाइट टू द डार्केस्ट एंड मोस्ट क्योटिक कॉर्नर्स ऑफ आर लाइव्स. जब लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ सा लगे ना, तो उनकी चमक, उनकी स्माइल की चमक और उनकी एनर्जी की चमक हमारी उम्मीदों को जगा सकती है. तो हैव दैट फेथ इन माँ कुष्मंडा एंड शी विल टेक केयर ऑफ यू. शी प्रूव्स दैट जेन्युइन वार्म्थ एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड आर एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ क्रिएशंस. एंड माँ कुष्मंडा सिंबलाइजेस द क्रिएशन of the universe, the cosmic energy and the radiant power of the sun. और आपके पास भी, हर किसी के पास वो power है कि अपने दिन को आप बेहतर बना सकें, अपनी life को आप बेहतर बना सकें. Wishing you all day 4 of Navratri. This is Gapshap Gali with me too.

डे फोर ऑफ नवरात्रि लेडीज एंड जेंटलमैन, और जैसे कि आपको कल मैंने बताया था, अगर आपने नहीं सुना तो आप जान लें कि भाई महाराष्ट्र टाइम्स के कारण अब हमारी नवरात्रि में ना रंग बिरंगे रंग जो जुड़े हैं, हर दिन के साथ एक एसोसिएटेड रंग होता है, दैट्स थैंक्स टू महाराष्ट्र टाइम्स और उनका ये कैंपेन फॉर नवरात्रि टू अट्रैक्ट वीमेन टू बी सेलिब्रेटिंग विथ वाइब्रेंट कलर्स, और इसीलिए हर दिन के लिए एक डेजिग्नेटेड कलर बनाया गया है. Since 2003 ये जो एक कैंपेन नवरात्रि कैंपेन के तौर पे शुरू हुआ था, इट हैज़ बिकम अ कल्चर एंड अ ट्रेंड ऑफ नवरात्रि. तो आज के दिन आप एक्चुअली यू कैन डीप यू नो सॉर्ट ऑफ डाइव डीप इन टू द एलिगेंट एंड वास्ट शेड्स ऑफ रॉयल ब्लू. आई जस्ट लव दिस कलर. ये रंग ना आसमान को बताता है, आसमान की वास्टनेस को या समुंदर की गहराई को ये बताता है, एंड जो इमेंस डेप्थ या एक कामनेस और बाउंडलेस क्रिएटिविटी उसको दर्शाता है द रंग रॉयल ब्लू. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एडिंग अ टच ऑफ रॉयल ब्लू टू योर वार्डरोब टुडे गिव्स ऑफ दैट इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड एंड स्टेबल वाइब. आज का दिन अपने अंदर की जो वो अनशेकेबल कामनेस है ना, उसे बाहर लाने का दिन है. पुट ऑन दैट स्टनिंग ब्लू शर्ट, या तो यू नो एक बहुत ही वाइब्रेंट गॉर्जियस सफायर बिंदी लगा लें टू इंस्टेंटली एलिवेट योर एवरीडे स्टाइल, और फिर तस्वीरें ज़रूर खींचें हर दिन के साथ एक रंग, और आज का रंग है रॉयल ब्लू. लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

आप हमारी एनर्जी के साथ एनर्जी मैच कर रहे हैं कि नहीं. दिस इज डे 4 ऑफ नवरात्रि एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल नवरात्रि सेगमेंट दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू ऑन फनेशिया नेटवर्क ऑन गपशप गली विथ मी टू. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. और कालीदास जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट कि आपको बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से हम इस दिन के हाईलाइट को, नवरात्रि के हाईलाइट को हम समझा रहे हैं आपको. एंड ये समझाने समझने की बात नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है. हमारी आप तक बात पहुंचती है और आपकी बात हम तक पहुंचती है. और आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कोई गाना रिक्वेस्ट नहीं था, बस तारीफ करने के लिए आपने कॉल किया. एंड ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, द नवरात्रि चैलेंज फॉर डे 4 दैट आई वांट टू प्रेजेंट टू यू, एंड इट इज टू एक्टिवली क्रिएट ए पॉजिटिव रिपल इफेक्ट इन समवन एल्सेस डे. आज ऑफिस में या कॉफी शॉप में किसी भी एक अनजान इंसान को एक जेन्युइन और अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट जरूर दें. इट टेक्स एब्सोल्युटली $0 टू बी काइंड, बट इट कैन कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ टर्न समवंस मिजरेबल वीक अराउंड. अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें और आसपास में वो रॉयल ब्लू कामनेस, रॉयल ब्लू इज द कलर ऑफ डे 4 नवरात्रि टुडे, और उस कामनेस को सबके अंदर लाने की कोशिश करें. क्योंकि ये जो रिपल इफेक्ट होता है ना, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आप माने या ना माने, इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू कि आप जिस मूड और जिस एटीट्यूड से बाहर जाते हैं दुनिया से मिंगल करने के लिए, वही एटीट्यूड और वही मूड आप रिफ्लेक्ट भी करते हैं. तो इसीलिए ज़रूरी है, जैसे कि कालीदास जी ने मुझे इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया, आप ज़रूर आगे बढ़ के किसी को कॉम्प्लीमेंट दें और फील करें द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दैट. यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस वन, आई प्रॉमिस यू ऑन दैट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: This is Gupshup Gali with me too, Pushpa Patelji. Thank you so much for your call. Means a lot when you guys try and connect with us. वैसे मैं बताऊं कि Flavor Lounge में भी आप अच्छी तरह से connect करेंगे क्योंकि all new weekend lunch buffet भाई इनके पास जो है that is something really really special and that, something that you will enjoy Saturday Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. It's the Flavor Lounge.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: Are wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर विजिट श्रीकृष्णा.com
10: हेलो एक्सीडेंट क्लेम Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.
11: एक और लड्डू ले लो
12: थोड़ी और बिरयानी
11: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा
13: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए
14: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 पैशन हेल्थ Primary care.
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
16: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
15: Miss clicks?
17: 100 logon ne click bhi kiya.
15: Customers kitne aaye?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
9: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
1: Kitni lambi list hai?
6: Bas, 2 pages. Indian dresses, mithai, namkeen aur haan, ek puja mandir bhi.
12: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
20: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
21: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
9: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।
22: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
23: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

अगर ये गाना आपने पहली बार सुना है, आपकी ये गलती नहीं है ना ही ये हमारी गलती, क्योंकि ये गाना आज ही रिलीज़ हुआ है 11 घंटे पहले. एंड इफ़ इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू हर्ड इट ऑन माई शो, ये क्रेडिट लेना चाहती हूँ कि यार हम नए पुराने जो गाने हैं वो आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं, इसका क्रेडिट तो हम ज़रूर लेना चाहेंगे. फनी एशिया नेटवर्क दैट यू आर ट्यून्ड इनटू एंड दिस इज़ गपशप गली विद मी टू. ये जो आखिरी सेगमेंट होता है मेरे शो का, इट इज़ ऑल अबाउट न्यू एंड ताज़ा थिंग्स दैट आई शेयर, वो चाहे टेक की दुनिया से हो या ऐसे गाने की दुनिया से, म्यूज़िक की दुनिया से, बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, एनी थिंग दैट इज़ फ्रेश एंड न्यू इन माई यू नो स्कोप ऑफ विजन, जो मेरे हिस्से में न्यूज़ आती है उसमें जो मुझे मिलता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आई नो दैट देर इज़ प्लेंटी अदर थिंग्स दैट आर बींग रिलीज्ड एवरी सिंगल डे फॉर दैट मैटर, लेकिन सारा कुछ तो कैसे बताया जाए आपको आधे घंटे में ना. इस आखिरी आधे घंटे में स्टे ट्यून्ड एंड आई विल ब्रिंग समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर मेनी ऑफ यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ. तो इसी बात पे एक और नया गाना हो जाए और उस गाने पे जाएं, उसके पहले बता दें कि भाई श्री कृष्णा ज्वेलर्स के पास भी कमाल के नए नए डिज़ाइंस आते रहते हैं, गोल्ड डायमंड्स पुलकी एंड मोर दैट यू कैन गेट इट इन विद डिज़ाइंस फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी स्टाइल लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स देम वेरी वेरी स्पेशल. 13145 मेन स्ट्रीट स्वीट 220 फ्रिस्को इज द एड्रेस फॉर योर GPS. कॉल कर सकते हैं आप 4302311111 पे. श्री कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

टू माई वंडरफुल लिसनर्स, सीपीए सुधीर पाए का नाम कौन नहीं जानता, राइट? माई टाइम इक्विटी के सीपीए सुधीर पाए ये ऑफर करते हैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. तो अगर इनमें से किसी भी सर्विस की आपको ज़रूरत है, यू नो वॉट टू डू. माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम इज द वेबसाइट एंड दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, टैक्स अवेयर स्ट्रैटेजीज एंड फाइनेंशियल planning, everything under one coordinated approach that they have for all of you. And that's my time equity, ladies and gentlemen. To bas jo baki hai wo hai ki number share kar lein taki aap unse jhatpat baat karein aur apne appointment set kar lein. 4697021272 is that a number. ऑल राइट, ये पिछले हफ्ते की बात है और पिछले हफ्ते अगर आप जानते हो तो पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स ने मिलकर $111 बिलियन का एक हिस्टोरिक मर्जर कंप्लीट किया है. आपको पता है ना इसके बारे में. और इस जायंट नई कंपनी का जो नाम है वो है स्काईडांस कॉर्प. दिस अनबिलीवेबल डील बेसिकली पुट्स ऑल योर फेवरेट मैसिव नेटवर्क्स लाइक HBO, MTV, CNN, CBC एंड वार्नर ब्रदर्स अंडर वन सिंगल कॉर्पोरेट अम्ब्रेला. इस मेगा मर्जर का सबसे बड़ा रीजन पता है आपको क्या है? स्ट्रीमिंग किंग नेटफ्लिक्स को टक्कर देना. पर इसका सीधा असर हमारे बजट्स पर भी पड़ने वाला है. वाइल स्पोर्ट्स फैंस आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ CBC एंड TNT अंडर वन रूफ, दिस माइट एक्चुअली एंड अप बीइंग प्रीटी बैड न्यूज फॉर आवर मंथली बजट्स. इन फैक्ट लेस देन अ वीक आफ्टर क्लोजिंग दिस हिस्टोरिकल डील, डिस्कवरी प्लस हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक फॉर देयर स्ट्रीमिंग प्लान्स. एक्सपर्ट बिलीव दैट विद अ जॉ ड्रॉपिंग $80 बिलियन इन कंबाइंड डेट, दीज Studios will take fewer creative risks, but their ultimate master plan is to combine HBO Max, Paramount Plus, and Discovery Plus into one giant app. जब तक ये सारी एप्स मिलकर एक होती हैं, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पर थोड़ा सा नजर रखिए. This is Gupshup Kali with Me Too.

आज एक और गर्म दिन हमारे हिस्से में लिखा हुआ है इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया. हाई विल बी अराउंड 92 और इट विल बी वार्म, इट विल बी ब्रीजी, इट विल बी मगी. लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में. कल 30% चांस ऑफ शावर्स दैट वी आर गोइंग टू सी विद अ हाई ऑफ 39 एंड देन फ्राइडे का किस्सा बिल्कुल अलग है. फॉल सीजन के साथ मैच करता हुआ टेम्परमेंट फ्राइडे सैटरडे संडे का एंड गोइंग फॉरवर्ड यार फॉल सीजन तो आना ही चाहिए, है कि नहीं. लेकिन फॉल सीजन को फॉल सीजन क्यों बोलते हैं पता है आपको? केवल पत्तों के झड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे बाल भी बहुत झड़ते हैं. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: All right, I'm getting ready to wind up my show for today. और आयुषी के लिए जगह बनाते हैं उनकी बेहतरीन शो को. Enjoy कीजिए आप right here. And this is your host, Me Too, signing off.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
4: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Janu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
5: Yeah. बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
1: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
1: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
9: That garba was totally worth it. We had so much fun.
10: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
9: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
1: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
11: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए. इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे. फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन.
12: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस. गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइन फॉर एवरी सेलिब्रेशन.
11: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग. मान्यवर मोहे, सेलिब्रेशन आपका अंदाज खास.
2: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर, ऑस्टिन.
13: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
14: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशिया रेडियो पर.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डालस, दिस इज योर होस्ट आयुषी और आप सुन रहे हैं फनीजिया 104.9 FM। और फिर से आपका एक बार स्वागत है नेशन के फन स्टेशन पे। और आप सबको बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। और जैसा कि हमने इस नवरात्रि के 9 दिन तक डिसाइड किया था कि अपने शो को माँ दुर्गा के नाम के साथ और उनके बारे में बात करके शुरू करेंगे, बस उसी का वक्त हो गया है। फिलहाल आपके लिए एक ये छोटी सी प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद अपने शो को करेंगे शुरू।

नवरात्रि का चौथा दिन और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में आज हम बात करेंगे, माँ कुष्मांडा की। कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार था, जब ना समय था ना सृष्टि का कोई रूप, तब माँ कुष्मांडा ने एक दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार उनकी मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड का में प्रकाश फैला है, इसी वजह से उन्हें कुष्मांडा कहते हैं। उनके नाम के अर्थ भी बहुत ही दिलचस्प है, आपको बताती हूँ मैं। मान्यता के अनुसार कु का अर्थ होता है, अगर इनके नाम को तोड़ा जाए कुष्मांडा, तो कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म मतलब ऊर्जा या गर्मी, और अंडा इसका अर्थ है द कॉस्मिक एग और यूनिवर्स। और माँ के इसी रूप को ना ब्रह्मांड की सृजनकर्ता और जीवन को ऊर्जा देने वाली माँ भी माना जाता है। उनका ये स्वरूप बहुत ही तेजमयी है, उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उनकी उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र कमंडल जपमाला और अमृत से भरा कलश जैसे दिव्य प्रतीक वर्णित हैं। उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। भक्तों की मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन का रंग परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन नवरात्रि रंग सूचियों में से पीला रंग माँ कुष्मांडा से जोड़ा जाता है, जो कि खुशी, रोशनी और उम्मीद का प्रतीक है। और अगर हम इसको एक औरत के जीवन से कंपेयर करें, तो माँ का ये जो चौथा रूप है ना, ये वो रूप है जिसमें अब माँ दुर्गा, जब उनका पहला अवतार हुआ एक पुत्री का, फिर वो ब्रह्मचारिणी बनी, जहाँ पर उन्होंने जीवन में परिश्रम और डिसिप्लिन सीखा, और उसके बाद से फिर वो स्कंद माता बनी, जहाँ पर उन्होंने जब वो उनके सर पे अर्ध चंद्रमा है, वो लाल वस्त्र में एक नवविवाहित स्त्री की तरह है। ये जो इसके बाद का रूप है कुष्मांडा, जहाँ पर अब वो एक कॉस्मिक एग यूनिवर्स को पैदा करने वाली या जन्म देने वाली हैं, वो एक माँ का उनकी अगली अगले उनके स्टेप पे वो माँ बनने वाली हैं अब यहाँ पर। लेकिन अगर माँ कुष्मांडा को एक मॉडर्न वुमेन से जोड़कर देखा जाए, तो बहुत ही खूबसूरत सी बात सामने आती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को रोशन किया, और आज की औरत भी अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने हौसले से अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर रही है। कभी वो एक माँ बनकर अपने बच्चों की दुनिया बनाती है, कभी एक प्रोफेसर बनकर नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को जन्म देती है, कभी एक एंटरप्रेन्योर बनकर अपना बिजनेस खड़ा करती है, तो कभी एक बेटी बनकर अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनती है। और सबसे खास बात, वो अक्सर अपनी जिंदगी के अंधेरों में भी दूसरों के लिए रोशनी ढूंढ लेती है। लेकिन माँ कुष्मांडा से हमने एक और सीख मिलती है, दुनिया को रोशन करने के लिए अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखना भी जरूरी है। हर वक्त सबके लिए मजबूत बने रहना ही ताकत नहीं, कभी अपने लिए वक्त निकालना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपनी खुशी को अहमियत देना भी उतना ही जरूरी होता है। तो इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा से प्रेरणा लें, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, अपने सपनों को जन्म दें, और याद रखें, एक छोटी सी मुस्कान भी किसी की दुनिया बदल सकती है। माँ कुष्मांडा आप सबके जीवन में खुशियों सहित उम्मीद और नई ऊर्जा का प्रकाश भरे। इसके साथ आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं फनीशिया की पूरी टीम की तरफ से।

इसके साथ आप सबको नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगलमय हो, माँ अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि आपके सपनों का घर आपसे बहुत ही करीब है, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा करीब है, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग एंड रीफाइनेंसिंग। तो अगर आप भी अपना घर खरीदना चाह रहे हैं या रीफाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो प्लीज कॉल करिए 972-245-5626 पर और विजिट करिए dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। तो भैया स्टूडियो की लाइंस खुली हैं, फोन नंबर है 972-235-5555। कोई गाना सुनना चाह रहे हैं या फिर कोई भजन सुनना चाह रहे हैं या कोई बॉलीवुड गाना सुनना चाह रहे हैं तो जरूर कॉल करिए और फरमाइश दीजिए अपने पसंद के गानों की। फिलहाल मेरे पास एक गाने की फरमाइश आकर के रखी हुई है पहले से ही, मतलब स्टूडियो में आने के पहले से भाई, कि तुम जाओगी तो जाते ही ये गाना जरूर प्ले करना। वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स कॉल एंड शी टोल्ड मी कि प्लीज आई लिसन टू योर शो व्हेनेवर यू देयर, सो ये गाना आपके लिए है श्रुति।

Injured in a car, truck or slip and fall accident, focus on healing while attorney Omar fights for you. And you pay nothing unless he wins. So, aap call kar sakte hai 469-300-5046 pe or visit attorneyomar.com. Aur bhai, ek to aise hi tyoharon ka mausam hai. Aur tyoharon ke mausam ke saath saath घर में पूजा पाठ चल रही है. जिसके यहाँ जाओ, मतलब फ्रेंड्स के यहाँ से जगरातों के न्योते आ रहे हैं, वहाँ जाना है, पूरा माहौल फेस्टिव हो रखा है. और उसमें सोने पे सुहागा है ये आजकल का सोशल मीडिया. मतलब हम खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं आजकल, मतलब स्क्रीन टाइम देख करके होश उड़ गए मेरे खुद के. बट रहना पड़ता है क्योंकि खुद की भी रील्स डालनी है. तो यू नो, आई एम नाउ अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर वैसे तो, बट इट्स ओके. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कि सोशल मीडिया सोने पे सुहागा है, फेस्टिविटीज चारों तरफ है. और ये जो हमें इंडिया की रील्स या फिर त्योहारों की रील्स दिखा दिखा करके इतना सुपर नॉस्टैल्जिक कर देते हैं ना ये लोग, कि कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं हम. मतलब पिछले दो दिन से यही चल रहा है मेरे जीवन में कि हम खुद भी नौ दुर्गा के नौ रूप पे रील्स बना रहे हैं और चारों तरफ वही देख रहे हैं, उसी की बात हो रही है. एंड कुछ ज़्यादा ही धार्मिक और फेस्टिव माहौल हो गया है चारों तरफ. और अपने शो में भी हम आजकल शुरुआत कर रहे हैं देवी के नाम से, बिकॉज़ यार नौ दिन तो देवी के नाम से ही सब कुछ शुरू होना चाहिए. हमारे कण कण में बसी है माँ दुर्गा, तो क्यों ना ले उनका नाम. तो ऐसे ही कुछ प्यारे और गाने चल रहे हैं ठीक एक बजे तक. अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं जो दुर्गा जी का हो या फिर माँ दुर्गा से रिलेटेड हो, तो प्लीज कॉल करिए. कोई भजन हो, कोई आरती हो जो आप सुनना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल मी ऑन स्टूडियो नंबर 9722355555 और अपने पसंद के गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. है तो ये बॉलीवुड का नंबर जिसमें राजेश खन्ना है और उनके साथ शबाना आजमी है, लेकिन है ये भी नवरात्रि स्पेशल.

0: वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी से जाके वापस आते हैं और फिर सुनेंगे ढेर सारी बॉलीवुड की खबरें, कुछ चटपटी, कुछ गॉसिप्स एंड अपने शो को आपके गानों के साथ सजाएंगे। जा रहे हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक में, जल्दी से वापस आते हैं, सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
4: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल।
5: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट। मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी, बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स। Every home has a story. Let's create yours together.
2: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
4: Phone uthaye, number dabaye.
5: 347-449-4242.
6: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही 2 से 3 ऑप्शंस।
7: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
2: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगास, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400, फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: Har Mohabbat Ki Awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
2: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
11: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16th, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
2: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
11: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
12: Jag ghume aathare jaisa na koi.
13: सर का पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
14: वेलकम बैक, फिर से एक बार आपका स्वागत है फनीशिया 104.9 FM पे। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और भैया 12:30 बजे ठीक स्टूडियो में पहुंच गए थे आपको एंटरटेन करने के लिए, और 2:30 बजे तक आपके साथ हैं, आपके पसंद के गाने प्ले करेंगे, आपसे करेंगे कुछ चटपटी बातें, कुछ गॉसिप्स लेकर के आए हैं हम बॉलीवुड से। तो भैया, जो लोग कॉफी विद करण के फैन हैं उनको बता दें कि सीजन फिनाले आ गया है और कॉफी विद करण अब बंद हो रहा है, और ये बात बार बार उनसे पूछी, पता है किसने, सलमान से, कि यार करण तो मजाक कर रहे हो, फिर वापस आ जाओगे थोड़े दिन बाद, लेकिन नहीं, दिस इज द सीजन फिनाले एंड द लास्ट एपिसोड हैज बीन शॉट विद सलमान खान। यस, So in the 9th and the final season of Coffee with Karan, which is scheduled to premiere today, agar aap fan hai to jaiye zarur aaj tune in karke dekhiye. Isme aapko dekhenge Salman Khan as the first guest and reported surprise appearance is by Karishma Kapoor. Isko abhi reveal nahi kiya gaya hai and this would be a nostalgic reunion for the fans of 1990s. Karishma aur Salman saath mein. So Coffee with Karan ke fan ho to jao zarur dekho isko. आज फिलहाल सलमान का एक गाना सुनाते हैं और फिर कुछ और खबरें लेकर के आएंगे बॉलीवुड से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. To bhai Salman Khan ka ye gana, it's like all-time favorite. Kabhi bhi laga do, bas man khush ho jata hai. And yaar, ek baat aur aa rahi thi is gaane ko dekh kar ke dimag mein ki apne favorite stars ko age karte hue dekhna bahut hi mushkil kaam hai. Umar hum sab ki bad rahi hai, sab boodhe ho rahe hain, but inko hum screen pe dekhte aaye hain aur suddenly, you know, in the last couple of days, ye tino bhai, dono bhai actually, Sohail Khan and Salman Khan has been in news for their looks and how they're looking. But yaar, people need to understand they're actually aging. And we should accept that, accept it. भले ही चाहे हमारा कितना भी मन कर रहा हो कि हम वही सलमान खान देखें जो ओ जाने जाना में दिख रहा हो, पर वो दिखेगा नहीं यार, उनके टाइम हो गया. मतलब वो भी उम्र हो रही है उनकी भी, हर कोई बदलता है, बट या दे आर एजिंग, सो इट्स ओके. बट हाँ, कभी कभी दुख जरूर होता है. तो चलिए अगले बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं. सो भैया, ये रणझोर का राठौड़ याद है आपको? He has been in the news for some good or bad reasons, whatever it is. India में फिर से protest चल रहे हैं और इस protest में इस बार हमारे रणझोर का राठौड़ जो है वो detain हो गया है. पुलिस की गाड़ी में काफ़ी सारे reels viral हुए हैं और इसके कारण वो viral हो रहे हैं social media पर. उनको किसी और कारण से viral नहीं किया गया, मतलब movie नहीं आ रही है, किसी गाने में नहीं आ रहे, कहीं acting नहीं कर रहे हैं, पर protest में ज़रूर जा रहे हैं और detain हो रहे हैं. तो चलिए आपसे पूछते हैं, कौन है ये रणझोर का राठौड़? कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर, बताइए मुझे. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. फिलहाल राठौड़ साहब का एक गाना सुनाते हैं आपको. कौन है ये एक्टर जिसको बोला गया था उनकी पहली फिल्म में रणझोर का राठौड़?

Okay, so that was Ranjhor ka Rathod Imran Khan from the movie Jaane Do Ya Jaane Na. And thank you for your calls. Sahi jawab diya hai aap sabne. Ek nahi, do nahi, teen nahi, shayad char calls aayi hai mere paas. Aur charon ke jawab bilkul sahi the. And this news, I mean, Imran Khan has been trending in the news because, you know, ye real life parallel ho gaya tha unke saath. On October 10th, Imran Khan was briefly detained by the Mumbai police during a public protest. Aur wahan par viral meme kya tha ki bhai Jay Rathod finally jail chale gaye, matlab real life mein bhi. Because ye teen condition hi yahi thi Ranjhor ka Rathod banne ke liye ki unko ek baar ghode pe sawari karni hai. और उनको जेल जाना है और उनको अपने प्यार का इजहार करना है जोर जोर से. तो ये तीन कंडीशन उन्होंने, उसमें से एक कंडीशन पूरी कर ली है जिंदगी में, रियल लाइफ में. तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं. लेकिन उसके पहले आपको दे दे कुछ जरूरी जानकारी. यस, योर हेल्थ डिजर्व्स केयर दैट यू कैन ट्रस्ट. विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स, वेट मैनेजमेंट, वुमेन्स हेल्थ एंड क्रॉनिक कंडीशन केयर. सेम टाइम अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं नए पेशेंट्स के लिए भी. सो सेम डे अपॉइंटमेंट फॉर न्यू पेशेंट्स. सो जस्ट कॉल देम ऑन 469-649-9995. आई रिपीट, दैट्स 469-649-9995. और विजिट aimallen.com टुडे. अगले गाने की तरफ चलते हैं. उसके पहले आपको बता दें कि ये गाना है सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा की फिल्म का, सैयारा का, जो कि फिलहाल हेडलाइन में है सैयारा के कारण नहीं. शी इज इन द स्पॉटलाइट फॉर हर बर्थडे सेलिब्रेशन. दैट वाज अ फेरी टेल थीम्ड बर्थडे सेलिब्रेशन. और इनके सेलिब्रेशन में इनके को एक्टर आहान पांडे भी दिखे हैं. और ये देखकर बहुत चर्चा हो रही है कि दोनों साथ में बहुत समय बाद दिखे हैं, वो भी बर्थडे पे, विच वॉज एन इंटीमेट अफेयर फैमिली के साथ, क्लोज फ्रेंड्स. कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सो इज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सैयारा.

इस गाने का ये वाला वर्जन ना मेरा फेवरेट है, श्रेया घोषाल की आवाज में. ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई जस्ट लव दिस वन, द रिप्राइज वर्जन ऑफ सैयारा का टाइटल ट्रैक. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के लिए की तरफ चलते हैं, और ये है दृश्यम 3 के बारे में. भाई दृश्यम के फैंस, आप लोगों के लिए है ये न्यूज. पहले तो दृश्यम की टिकट्स जो है वो प्री बुक हो रही थी, और उसमें ही काफी सारी न्यूज में थी ये फिल्म. एंड नाउ द फिल्म इज इन सेकेंड वीक ऑफ आफ्टर रिलीज, एंड उसमें इसका कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड जो है वो 500 करोड़ इंडियन रुपीज़ का हो गया है. एंड दिस हैज़ बीन अ मेजर टॉकिंग पॉइंट फॉर अजय देवगन की फिल्म. भाई दृश्यम के कितने भी यू नो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाए तो मुझे लग रहा है ऐसे ही टाइप का कुछ कलेक्शन होने वाला है, बिकॉज लोग इस फिल्म के ही फैन हो गए हैं. स्टोरी, प्लॉट, सब कुछ बिल्कुल सेट रहता है. सो एनीवेज, दृश्यम के गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं. ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ लकी अली.

अगली खबर है कि कैटरीना कैफ ने फाइनली अपना अपीयरेंस दिया है रिसेंटली एक इवेंट में. शी वॉज देयर. पिछले कुछ हफ्तों से उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था उनके पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में. एंड आफ्टर फेसिंग दैट बॉडी शेमिंग ओवर अ पोस्ट प्रेगनेंसी अपीयरेंस, करीना मेड अ स्टनिंग अपीयरेंस इन लंदन ऑन अक्टूबर 8th टू सेलिब्रेट हर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अ ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटीज पार्टनरशिप विद स्पेस एनके. एंड शी लुक्ड अमेजिंग इन दैट चिक ब्राउन आउटफिट विद धोती स्टाइल का स्कर्ट. ओ माई गॉड, वो बहुत सुंदर लग रही थी. एंड बियॉन्ड द फैशन, उनका मैसेज ना बहुत पावरफुल था, डोंट लेट सोशल मीडिया डिसाइड योर सेल्फ वर्थ. करीना ने ये बात कही. एंड यू हैव एंड कटरीना हैड पुट इट डाउन दैट समटाइम्स यू हैव टू बी योर ओन बिगेस्ट चीयर लीडर. तो भैया उन्होंने सारे ट्रोल्स को शांत कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको. एंड सलमान खान ऑल्सो स्टूड अप फॉर हर इन वन ऑफ द एपिसोड फ्रॉम बिग बॉस. मैंने इस पर बात की थी पहले, बट येस इस बार उन्होंने खुद से बोला है कि सोशल मीडिया यार बस इट्स जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म. तो जो लोग भी सोशल मीडिया को देख के ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ को देख के इंस्पायर हो, मत हो. सबकी ज़िंदगी ना पीछे वैसी चल रही है, और प्लीज़ डोंट लेट दैट वन थिंग डिसाइड योर सेल्फ वर्थ. तो चलिए इसी बात पे करीना का गाना सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपने शो में आपको और कुछ प्यारे प्यारे गाने और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनाएंगे. हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
2: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
3: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
4: क्या
5: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
6: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
7: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
8: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
7: 20 को गरबा का प्लान,
8: देन फ्लेवर लाउंज,
7: 1st को दिवाली मीटअप,
8: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज.
7: और आज कोई प्लान ही नहीं है
8: तो चलो फ्लेवर लाउंज.
9: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
6: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को. इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
15: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
14: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
15: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
16: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर. डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास.
6: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM.
16: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
21: Next question.
20: Bride ki entry song.
21: Yaad nahi.
20: Buffet mein kya tha?
21: Chana papri chaat, Bihari kabab, Dilli nihari, Achari chicken, Mutton biryani.
1: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
22: एक सा
0: Mandir. DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
4: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
0: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
4: October 17th, Mata Ki Chauki.
0: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
4: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
22: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे. ये है नेशन का फन स्टेशन. और अब अपने अगले सेगमेंट में ना हम आपको एक ऐसे कलाकार के गाने सुनाने वाले हैं जिसके गानों की प्लेलिस्ट जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना तो हर किसी के पास हुआ करती थी, लैपटॉप में, फ़ोन में. उस समय फ़ोन आ गया था और मेरे पास नोकिया का वो एक स्लाइड फ़ोन था जिसका रंग था लाल और काला, और मैं नाम भूल गई मतलब कौन सा वाला था मॉडल, आई हैव फॉरगॉटन दैट. बट यस, दैट वाज, दैट फोन वाज बॉट ओनली फॉर लिसनिंग टू सॉन्ग्स बिकॉज कॉलेज में, हॉस्टल में, और था ही क्या साथी हमारा. तो उस दौर के कुछ गाने आपके लिए आज लेकर के आ रहे हैं हम आतिफ असलम की आवाज़ में. क्योंकि कल ही मैंने एक और इंस्टाग्राम पे, मैं एक आरजे को फॉलो करती हूँ फ्रॉम इंडिया, वो गा रही थी गाड़ी में बड़े, तो मैंने लगा कि यार ये गाने तो फिर से जाके सुनने पड़ेंगे. दिस इज अ टाइम ट्रैवल. सो लेट मी टेक यू थ्रू दैट सॉन्ग्स. अगर आपका भी कोई ना पसंदीदा गाना हो आतिफ असलम का, जो एक एल्बम था, एक ट्रैक था जिसमें सारे उनके गाने हुआ करते थे, वो वाले गाने सुनने का मन कर रहा हो तो स्टूडियो के नंबर पर जरूर कॉल करें. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. ये रहा एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना आतिफ असलम की आवाज़ में, एंड इस गाने की फरमाइश की है सफी ने. सफी, दिस वन इज फॉर यू.
23: आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहां रंग है यार है फुर्सत है, शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो. चलो कहूं तुमसे मैं मेरी कहानी.

Okay, so it's time to experience the magic of Rahat Fateh Ali Khan live, joined by his son Shahzaman Ali Khan on the Once Upon Time World Tour 2026. Enjoy an unforgettable night of Qawwali, Sufi, Bollywood hits and timeless melodies. Friday, October 16th at 8:30 PM at Co America Center in Frisco. And here's a chance to win one ticket. Yes, Karahi Point ki taraf se hai ye ticket. You can win this today by answering a very simple question. मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ, आतिफ असलम की आवाज़ है और ये एक फिल्म का गाना है. बस आपको फिल्म का नाम मुझे बताना है. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. तो बताइए इस फिल्म का नाम और लेके जाइए ये गिव अवे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए.

ये वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ आतिफ असलम एंड जिस फिल्म का नाम है किस्मत कनेक्शन. हमें मिल गया है अपना आज का विनर. जोरदार तालियां हो जाए निलोई साहा के लिए. तो बस जाइए और एक्सपीरियंस करिए मैजिक ऑफ राहत फतेह अली खान लाइव. आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं कड़ाही पॉइंट से और जिस किसी को भी टिकट बाय करना है वो कड़ाही पॉइंट को कांटेक्ट कर सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की तरफ चलते हैं. यार बहुत सारे कॉल्स आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए. बट यार विनर तो एक ही हो सकता है और आज के विनर निलॉय जी हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम टेकिंग यू टूवर्ड्स नेक्स्ट सॉन्ग जो कि आतिफ असलम की ही एक एल्बम से है. बहुत ही प्यारा सा गाना और यही गाना सुन रही थी मैं कल इंस्टाग्राम पे, जिसके कारण मुझे आया कि आज तो बस आतिफ के सारे ही गाने सुन लेने हैं यहाँ स्टूडियो में और सुना देने हैं सबको.

It was this beautiful track in the voice of आतिफ असलम और कुछ आतिफ के ही गाने सुन रहे हैं हम और साथ में आपको दे रहे हैं कुछ ज़रूरी जानकारी और आपको दे रहे हैं कुछ गिव अवेज. जी हाँ, अगला गिव अवे आने वाला है फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से. फन पिज्ज़ा किचन न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ाज़ आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. ट्राई द फिएस्टा वेजी फायरी पोलो लोको सी फूड पैक चनोर कैमरॉन एंड मोर. आंसर टू डेज सिंपल क्वेश्चन एंड यू गेट अ $10 गिफ्ट कार्ड फन पिज्जा किचन फ्रिस्को की तरफ से. तो चलिए जल्दी से आपको गाना सुनाते हैं. पहले स्टूडियो का नंबर 9722355555 आतिफ की आवाज में ये अगला गाना और आपको बताना है फिल्म का नाम. ठीक है, जल्दी कॉल करिए, पहले कॉलर को ही मिलेगा ये गिव अवे.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: तो बताइए आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
3: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
4: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
2: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
5: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
6: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
7: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
8: Dad, property papers कहाँ हैं?
9: Laptop में.
8: Investment?
9: Google Drive.
8: Insurance? Passwords?
9: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
8: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
10: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
10: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभाल लेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
15: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
14: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
15: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
16: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
17: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620. 4.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
18: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे और आज अपने शो के सेगमेंट में हम सुना रहे हैं आपको आतिफ असलम के कुछ गाने। फिलहाल ब्रेक पे जाने के पहले हमने एक सवाल पूछा था गिव अवे के लिए और जवाब हमें मिल गया है। फिल्म का नाम था रेस। बहुत सारे कॉल्स आए, कुछ सवाल कुछ जवाब गलत थे, बाकी बहुत सारे सही भी थे, लेकिन ये गिव अवे जा रहा है यशस्विनी भटनागर को एंड जोरदार तालियां उनके लिए। तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से चलते हैं यार, माहौल चल रहा है, आतिफ असलम के रोमांटिक गाने चल रहे हैं, मतलब कौन इनको छोड़ के मेरी बातें सुनना पसंद करेगा। तो अगले गाने की तरफ जल्दी से लेके चलते हैं आपको।

लुकिंग फॉर ग्रेट फूड विद ग्रेट म्यूजिक. म्यूजिक हम सुना रहे हैं फनी शो पे. खाना आपको खिलाएगा सिग्नेचर रेस्टोरेंट. सिग्नेचर क्विजीन हैज ऑल द राइट फ्लेवर्स. एंजॉय देयर फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. आर प्लानिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल सेलिब्रेशन, इनके पास बैंकेट सर्विसेज भी हैं. तो आज ही जाइए सिग्नेचर क्विजीन एट स्प्रिंग क्रीक एंड एल्मा इन ईस्ट प्लेनो और गो टू signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजीन, लीविंग इट सिग्नेचर ऑन एवरी टेस्ट. और आतिफ असलम के रोमांटिक गानों का सफर चल रहा है भाई. अगली गाने की फरमाइश आई है फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी.

Attention, Texas business owners looking for smarter commercial energy solution. Trustara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Aap call kar sakte hain 844-428-2808 pe ya visit kariye taraenergy.com today. Chaliye aage badhte hain, show ko aage badhate hain, leke chalte hain aapko agle gaane ki taraf. A beautiful track and the voice of Asif Atlam. आतिफ असलम क्या हो गया मुझे आज. और जल्दी ही मेरे विदा लेने का भी वक्त आ रहा है, 10 मिनट बचे हैं और किरण जी यहाँ होंगी आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के. लगता है आज मेरे पानी का प्याला नहीं है मेरे पास, लिए जबान लड़खड़ा रही है मेरी. सो किरण जी होंगी आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के आप लोगों के लिए, आपकी सुनहरी किरण. अगला गाना ये रहा, ये भी आतिफ असलम की आवाज में है. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया होगा. इंजॉय करिए इस गाने को और फिर मिलते हैं जल्दी से इस गाने के बाद, फिर आपसे लेंगे विदा आज के लिए.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
5: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
4: Miss Clicks.
6: 100 logon ne click bhi kiya.
4: Customers kitne aaye?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
9: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
10: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाए विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Ye last Diwali pehna tha. ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
16: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
17: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के।
18: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
17: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
19: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
18: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
20: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
21: इस दिवाली टॉपल में देखिए एक भव्य नजारा, गणेशा, लक्ष्मी और सरस्वती के ग्रैंड LED कटआउट्स और पहली बार रामलीला। साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज, November 1st, द साउंड कपेल।
22: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

रोमांटिक मेलोडी सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम पे. मैं हूं किरण आपके साथ. और आगे बढ़ते हुए जी, हेल्थ के हवाले से एक बात, हेल्थ का ख्याल रखना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू हैव द राइट प्लेस, गो टू द राइट प्लेस टू गेट टेकन केयर ऑफ. एंड दैट राइट प्लेस कैन बी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. जी हाँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए अवेलेबल हैं. फ्रिस्को और अर्विंग लोकेशन तो सैटरडे और संडे को भी ओपन है, ताकि अगर आपको वीकडे में टाइम नहीं मिलता तो आप वीकेंड पे जो है अपना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आप पीसीबी देखना चाहते हैं तो आप वीकेंड्स पे भी अवेल कर सकते हैं. फॉर दैट आई विल गिव यू अ नंबर फर्स्ट. लेकिन वो नंबर, हाँ जी, पहले नोट कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं आप या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. वो नंबर है 214-666-6259. 214-666-6259 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. एंड passionhealthphysicians.com इज वेयर यू कैन लॉग ऑन टू फाइंड आउट मोर. और अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताती चलूं कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता तो आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आए हैं पैशन हेल्थ डायरेक्ट. दिस इज अ प्रोग्राम और अ मेंबरशिप दैट यू कैन बाय फॉर $85 अ मंथ. And in this, you will get primary care, preventive care, medication management, telehealth, aur bhi bahut kuch. So once again, if you have any questions regarding Passion Health Direct program, you can give them a call or text 214-666-6259. This is not a health insurance plan. This is a membership plan that they are offering. Some eligibility restrictions do apply. PassionHealthPhysicians.com is where you can log on.

और अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जैसे कि कोई शादी ब्याह का इवेंट है या फिर फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपने कोई ज्वेलरी खरीदनी है अपने लिए जस्ट टू पैम्पर योरसेल्फ, या फिर डायमंड कोई जेवर खरीदना है, anything and everything, PMJ Jewels is here. They are now open in Frisco. They are bringing over 60 years of jewelry experience and excellence to you. Timeless Indian craftsmanship aapke liye lekar aa rahe hain. Gold, diamonds, bridal collection for every celebration. Visit kijiye PMJ Jewels. They are located on Main Street इन फ्रिस्को. हर पीस एक जैसे होता है ना, आपकी कहानी का, हमारी ज़िंदगी में जब हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के उस पल की या उस कहानी का हिस्सा बन जाती हैं. सो हर खूबसूरत पीस बहुत खूबसूरती से आपकी कहानी में जुड़ जाएगा. दिस इज़ पीएमजे ज्वेल्स. आप सुन रहे हैं रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, एंड दिस वन इज़ गोइंग आउट टू सफ़ी.

इरफान पिज्जा किचन ने एक नई लाइनअप शुरू की है जी पिज्जा की, दैट इज द मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप। और अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की तो चेक देम आउट, वेजिटेरियन, चिकन, सी फूड, सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे मेक्सिकन इंस्पायर्ड। और उसके अलावा फन पिज्जा का मेन्यू तो आप जानते ही हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन कीजिए टू चेक आउट दैट मेन्यू एंड प्लेस दैट ऑर्डर। और अगर आप विनर हुए अब इस कॉन्टेस्ट के तो आपको मिलेगा $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट द फ्रिस्को लोकेशन। दिस इज ओनली वैलिड फॉर फ्रिस्को लोकेशन, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। और अगर आप पिछले एक महीने में किसी भी और उस पे शो पे ये गिव अवे जीत चुके हैं तो प्लीज एक महीने का वेट कर लीजिए। यू माइट नॉट बी ऑनर्ड इफ यू कीप रिपीटिंग द विन ओवर एंड ओवर अगेन, सो यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ वाली सिचुएशन है ये। तो जी अब चूंकि रोमांटिक मेलेडीज चल रही हैं तो मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और मुझे बताइए कि 1990s नहीं, हम ओवरऑल कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा मैच्योर रोमांटिक गाना प्ले करना हो या सुनना हो, जैसे कॉलेज रोमांस नहीं, टीनेज रोमांस नहीं, मैच्योर रोमांस, तो कौन सा गाना आपको पसंद आता है या आपके जहन में सबसे पहले आया वेयर मैच्योर रोमांस इज कंसर्न? जैसे कि ये आप सुन रहे थे, दैट वाज क्वाइट मैच्योर रोमांस, बट स्टिल ये भी कॉलेज का ही कुछ था, तो थोड़ा सा मैच्योर की तरफ जाइए, मुझे बताइए और जीत लीजिए ये गिव अवे 972-235-5555।

जी हाँ, सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल नंबर। और अब जी वापस आते हैं हमारे गिव अवे की तरफ, फन पिज्जा किचन की तरफ से आपके लिए ये $10 ऑफ आए थे ऑन योर नेक्स्ट बिल, फ्रिस्को लोकेशन ओनली। तो आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बड़े ही प्यारे प्यारे गाने आपने रिकमेंड किए, जैसे कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, या फिर ये देखिए कितनी बेचैन, हाँ सॉरी शिवानी, मैंने लिखा तो था जल्दी जल्दी, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, या फिर आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, या फिर गाने लाइक प्यार किया तो निभाना। देयर वाज सो मेनी कॉल्स एंड सो मेनी ब्यूटीफुल नंबर्स, सो मेनी ब्यूटीफुल रिकमेंडेशंस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जैस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसको एक नंबर असाइन होता है, मैथ का फॉर्मूला आपकी विन डिसाइड करता है, दैट इज योर लक। और हमारी आज के लकी विनर है जी स्वप्नपुरी पाटिल। स्वप्नपुरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फन पिज्जा किचन फ्रिस्को पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड गेट $10 ऑफ योर बिल ऑन योर नेक्स्ट यू नो परचेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमेशा की तरह मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज टू मी ऑल ऑफ यू आर विनर्स, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ, आप ही लोगों में से एक हमारे बहुत प्यारे कॉलर ने रिकमेंड किया, दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ अ वेरी मच्योर रोमांटिक सॉन्ग।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
2: Every home has a story. Let's create yours together.
3: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
4: स्टॉप, फेस्टिव फैशन चेक। नवरात्रे के आउटफिट्स रेडी है?
5: दो चनिया चोली है, मिक्स एंड मैच कर लूंगी।
4: फैशन वायलेशन, सेम आउटफिट को 9 रात ओवरटाइम।
5: तो सॉल्यूशन?
1: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल। एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्परेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि। प्लानिंग अ वेडिंग? डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस। कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर jyotikapateldesigns.com। इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस।
0: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
12: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
13: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
0: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
1: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

104.9 FM Fun Asia Radio पे ट्यून्ड हैं आप afternoon drive time सुन रहे हैं सुनहरी किरण के साथ and it is time now to give you the top 10 trending dramas for last week यानी के October 5th से लेके October 11th तक किन ड्रामों ने टीआरपी चार्ट्स पे मचाया धमाल और नंबर 1, 2, 3 से लेके 10 पोजीशन तक रहे. नंबर 10 पे जो ड्रामा रहा जी दैट इज ड्रामा सीरियल हुरमत. हुरमत जो है वो अभी अराउंड 1.5-2 हफ्ते पहले शुरू हुआ है. हम टीवी पे आता है ये शाम 8 बजे मंडेज एंड ट्यूसडेज को. तो ये क्या कहते हैं आपको मतलब कई सारी मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया है इस ड्रामे ने क्योंकि इसकी कास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे अगर आपकी लिस्ट में नहीं है कि मैं भी देख लूं. दाना नीर मुबीन इसके अंदर है जी जिन्होंने हुरमत का किरदार अदा किया है. हुरमत इसमें हीरोइन का नाम है. वैसे तो हुरमत का मतलब होता है इज्जत अगर आप उर्दू में देखिए सोचिए तो लेकिन इस ड्रामे में इनका नाम है दाना नीर का हुरमत. शाहवीर जाफरी हैं इसके अंदर जिन्होंने ताबिश का रोल प्ले किया है मार्किंग हिज मेजर टेलीविजन एक्टिंग डेब्यू. और इसके साथ अली ताहिर हैं जिन्होंने हुरमत के फादर का रोल प्ले किया. बेसिकली तो यही चंद लोग हैं जो कहानी जिनके गिर्द रिवॉल्व कर रही है. कहानी हुरमत के गिर्द रिवॉल्व कर रही है जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस यंग वुमन है. आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं. घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है. ओवर कंट्रोलिंग फादर हैं. अभी क्या होता है आगे बाउंड्रीज कौन सी सेट हुई हुई हैं और हुरमत उन बाउंड्रीज के साथ क्या करने वाली है यही है कहानी इस ड्रामा सीरियल की. सो नंबर 10 पे पीपल आर लाइकिंग इट और 2 हफ्ते में इसने टॉप 10 चार्ट्स में अपनी जगह बना ली है. विद दैट नंबर 9 पे जो ड्रामा रहा दैट इज ड्रामा सीरियल इज्जत. इज्जत ड्रामा सीरियल 20th सितंबर से आना शुरू हुआ था. ARY डिजिटल पे आता है 7 बजे शाम एवरी डे. दिस इज अ डेली शो और काफी हाई रेटिंग्स मिल रही हैं इसे. मीरा बली अतबिक मोहसिन और हशाम खान हमें इस ड्रामे में नजर आए और प्लॉट जो है वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स इमोशनल ट्रांजिशंस और सेंट्रल लव ट्राइंगल के ऊपर बेस कर रहा है. People are liking the chemistry, the engaging daily pace and the emotional hooks of the drama. Aur 8th number pe जो ड्रामा है वो है जी निश्तर ड्रामा. निश्तर ड्रामा उसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं दानिश तैमूर और अनमोल बलोच. इनकी केमिस्ट्री और इनकी जो फ्रेश पेयरिंग है पहली बार हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है. पीपल आर लाइकिंग द केमिस्ट्री द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ड्रामा द हाइज एंड लोज ऑफ द ड्रामा. लेकिन दानिश तैमूर के ड्रामे की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ड्रामा मैंने ड्रामा देखा मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप सा ड्रामा लगा लेकिन दानिश तैमूर के जो फैंस हैं वो अपने आइडल को कभी गिरने नहीं देते यानी कि दानिश तैमूर को गिरने नहीं देते. उनके ड्रामे को वो थाम के रखते हैं. टॉप 10 की लिस्ट में रहता ही है उनका ड्रामा चाहे किसी भी तरह का हो. तो अगर आपने नहीं देखा तो आप भी जरूर देखिए ताकि आप अपने लिए खुद डिसाइड करें वेदर यू लाइक नश्तर और नॉट. दैट वॉज 10, 9 and 8. आफ्टर दिस सॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7, 6 and 5.

7.4 एवरेज टीआरपीज के साथ गुलबहार ड्रामे ने सातवें पोजीशन पे अपनी जगह को बरकरार रखा. गुलबहार ड्रामा जो है वो आप कह लीजिए जंजीरें के बाद शुरू हुआ, जंजीरें के स्लॉट को उसने रिप्लेस किया है. हम टीवी पे आता है 8 बजे शाम वेंसडेज एंड थर्सडेज. सनम सईद और इमाद इरफानी का ये ड्रामा कोमल मीर इसमें हमें उनके साथ नजर आ रही हैं. सनम सईद और इमाद इरफानी को हम सब ने कफील में बहुत पसंद किया, व्हाट अ टॉक्सिक जोड़ी दैट वाज. लेकिन इस बार जो है उनको बहुत ही रोमांटिक जोड़ी में दिखाया जा रहा है. अच्छा, टीआरपीज की वजह मुझे कुछ शायद लोग इतना ज्यादा नाखुश हैं इस ड्रामे से या इसकी स्टोरी लाइन से कि फिर भी देख रहे हैं कि भी आगे क्या होने वाला है. बिकॉज द जनरल व्यू ऑफ दिस ड्रामा इज लाइक पीपल आर नॉट रियली हैप्पी विद द ड्रामा बिकॉज वही ट्रेडिशनल आपका जी के बेबी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर अब भी फैमिली ड्रामा, फैमिली प्रेशर, फैमिली ये फैमिली वो सारी चीज रिपीट एंड ओवर रिपीट हो रही है. एंड पीपल आर टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट इट. बट वही बोलते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा. तो नाम हो रहा है ड्रामे का और लोग देख रहे हैं. दिस इज गुलबहार एट नंबर 7. नंबर 6 पे ड्रामा सीरियल मैं तेरा विद द एवरेज टीआरपीज ऑफ 7.8 लास्ट वीक स्टैंड कर रहा है. 9 बजे शाम को आता है जी ARY डिजिटल पे. दिस इज मंडे टू फ्राइडे, 5 के 5 दिन. जैसे मैं आपके लिए आती हूँ ना मंडे टू फ्राइडे, वैसे ये ड्रामा आता है मैं तेरा मंडे थ्रू फ्राइडे. और अरीज अहमद, युसरा इरफान और घाना अली इसमें हमें मेजर रोल्स में नजर आ रहे हैं. ड्रामा जो है वो ये भी ड्रामा कुछ ऐसा ही, मैंने इसको 2-3 दफ़ा देखने की कोशिश करी लेकिन मुझे इतनी परेशानी होती है इस ड्रामे को देख के. स्पेशली जो बहन और उनके जो हस्बैंड हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान, वो फैमिली मुझे बहुत परेशान करती. तो लेकिन टू ईच देयर ओन, अगर आपको इस तरह का इलेक्ट्रिक फैमिली टॉक्सिक फैमिली वाली चीज़ें पसंद हैं तो शायद आपको पसंद आए. बट व्यूअर्स आर लाइकिंग इट एंड इट इज सक्सेसफुली कार्व्ड आउट अ लॉयल डेली ऑडियंस ऑन टेलीविजन. सो You might be just one of them. और इसके साथ 5वें नंबर पे जिस ड्रामे ने ट्रेंड किया विद 8 एवरेज TRP 8.0 इज ड्रामा सीरियल खफा. ड्रामा सीरियल खफा जो है ये आता है जी शाम 8 बजे. दिस इज ऑल्सो वेंसडेज एंड थर्सडेज को आता है जियो एंटरटेनमेंट पे. मिकाल जुल्फिकार, हिरा मानी, उज्मा हसन और सैफ अली खान इस ड्रामे में हमें नजर आ रहे हैं. इमोशनल फैमिली रोमांस और सोशल ड्रामा इसका आप जॉनर कह सकते हैं. व्यूअर्स आर लाइकिंग इट बिकॉज ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है. शो ने मेंटेन किया हुआ है अपने टॉप टीयर इवनिंग ड्रामा रैंकिंग को. और अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेट ऑफ दिस वीक 41, जैसे साल का 41st वीक है ये, तो खफा ने 8 TRPs के साथ अपनी पोजिशन को होल्ड किया हुआ है. ये हुए आपके लिए ये ड्रामा. अब हम जब इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी 4, 3, 2 एंड 1. वी हैव 4 मोर मेजर ड्रामाज लाइंड अप.

ड्रामा फीवर में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. चौथे नंबर पे मोहब्बत ड्रामा सीरियल विद 8.1 एवरेज टीआरपीस के साथ लास्ट वीक. दिस इज जियो एंटरटेनमेंट्स ड्रामा जो कि शाम 8 बजे आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज को. और जी इसमें हमें नजर आ रहे हैं फिरोज खान. जैसे दानिश तैमूर अपने साथ एक बहुत बड़ा फैन क्लब लेकर आते हैं, वैसे ही फिरोज खान अपने साथ एक बहुत बड़ा फैन क्लब लेकर आते हैं. इसीलिए इन लोगों का ड्रामा आते ही टीआरपी चार्ट्स पे अपनी जगह बना लेता है. इसी के साथ फिरोज खान के साथ नजर आ रही हैं नवल सईद और ऐना आसिफ और साथ ही साथ शाहवीर कादवानी. शाहवीर कादवानी जो हैं वो अब्दुल्ला कादवानी के छोटे सबसे छोटे बेटे हैं. अब्दुल्ला कादवानी एक बहुत बड़ा नाम है. अगर आप जानते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को तो यू डू नो हु इज अब्दुल्ला कादवानी. ही इज अ बिग प्रोड्यूसर. पहले वो एक्टर थे, फिर वो प्रोड्यूसर बने और अब जो मेजर मेजर ड्रामे प्रोड्यूस होते हैं टेलीविजन के लिए वो उनमें कहीं ना कहीं अब्दुल्ला कादवानी साहब का नाम होता ही है. तो कर रहे हैं अपने बेटे को इस ड्रामे से आई थिंक सेकंड लीड में लॉन्च. और उसकी थोड़ी सी रिव्यूज उनकी बहुत अच्छी नहीं है. पीपल आर नॉट लाइकिंग हिज एक्टिंग बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. द ड्रामा इज कैचिंग पॉपुलैरिटी. मोहब्बत इज अ मल्टी लेयर्ड रोमांस एंड फैमिली ड्रामा सेंटरिंग ऑन फोर लाइव्स bound by blood but facing vastly different personal battles. तो मतलब ये है कि आपको वही फैमिली खींचातानी मिलने वाली है इस ड्रामा में भी. टी आर पीज जो हैं वो काफ़ी इसकी अच्छी चल रही हैं. लोग एज ऑलवेज फिरोज खान फैक्टर है इसके अंदर जैसे दानिश तैमूर फैक्टर होता है. सो मैसिव चंक ऑफ द व्यूअरशिप हेयर टू वॉच फिरोज खान. इसी के साथ हाई प्रोडक्शन वैल्यू है और क्रॉस बॉर्डर अपील भी है. कुछ इस तरह का ड्रामा देखने को मिल रहा है. तीसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा ये वो ड्रामा है जी जिसने अभी बस तेरा साथो खत्म हुआ था. बस तेरा साथो का फीवर अभी तक चल रहा है और उसके साथ जो तीसरे नंबर पे उसकी जगह जिस ड्रामे ने रिप्लेस किया है वो है नंबर 3 पे ड्रामा सीरियल रुतबा जो कि अक्टूबर 16 से ARY डिजिटल पे आना शुरू हुआ है मंडेज एंड ट्यूजडेज 8 बजे शाम. एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टार कास्ट और स्पेशली जो आपकी प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है. तलहा चौधरी हैं में जिन्होंने हादी का रोल प्ले किया है जो कि एक विलेज टीचर यू नो अ डिटर्मिंड यंग मैन हु ट्रांजिशंस फ्रॉम बीइंग अ विलेज टीचर टू अ CSP पुलिस ऑफिसर यानी कि SP बन जाते हैं. हिबा बुखारी हैं इस ड्रामे में जिन्होंने महानूर का रोल प्ले किया है अ सिटी गर्ल जो कि विलेज में मूव करती हैं हादी के साथ शादी करके उनकी मोहब्बत में. महविश हयात ये एक और बहुत बड़ा नाम आपके सामने आया. पावरफुल कमांडिंग पर्सनैलिटी उनकी है इस जो रोल प्ले कर रही हैं शहनाज का. साथ ही साथ जाहिद अहमद एंड मैनी मोर एज द सपोर्टिंग कास्ट. The drama serial is about crime, investigation, marital drama, exploring themes of wealth and influence and piety as well as professional ambition. तो ये हुआ आपके लिए दूसरे नंबर तीसरे नंबर का ड्रामा. दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो सॉरी दूसरे और पहले नंबर पे जो ड्रामा रहा वो मैं आपको बताऊंगी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. कहीं मत जाइए.

0: और अजी दूसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा विद 16.5 एवरेज TRPs, दैट वाज बस तेरा साथ हो. पिछले हफ्ते क्योंकि हम कवर कर रहे हैं लास्ट वीक का ये TRP चार्ट्स फ्रॉम मंडे अक्टूबर 5th टिल अक्टूबर 11th, तो मंडे अक्टूबर 5th को आई बस तेरा साथ हो की लास्ट एपिसोड, दैट वाज द 45th एपिसोड ऑफ द ड्रामा. एंड उसने ऑफकोर्स एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड कि भाई क्या होने वाला है, हमने 44 एपिसोड देख लिए, इसको खत्म करो दिखा के अब क्या होना है. So that was one of the most trending last episodes of the season. Bas Tera Saath Ho 16.5 ke saath. The drama has officially ended. To Bas Tera Saath Ho ki jagah ab ye drama serial Rutba shuru hua hai jo teesre number pe tha. So jaldi se aap dekh lijiye agar aapne nahi dekha, aur last episode ke baad aapko mil jayega closure. Aur ab jo hai kyunki race itni sakht thi, muqabla itna sakht tha, to Dare Nijat jo hai wo bahut arse se apna jagah banane ki koshish kar raha tha. Jaise hi Bas Tera Saath Ho aur aapki और ये ड्रामा सीरियल जरा हटे तो दरे निजात ने पहली पोजीशन पे अपनी जगह बना ली है 16.8 एवरेज TRPs के साथ. दरे निजात ने इस हफ्ते लीड ली ड्रामा इंडस्ट्री पे और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बना दरे निजात. ऑनलाइन भी बहुत उसके व्यूज आ रहे हैं और दरे निजात के बारे में हम सभी बात कर चुके हैं जी के फ्राइडे और सैटरडे को 8 बजे आता है शहरयार मुनव्वर, दुरेफिशान सलीम और नमीर नवाज खान इसमें हमें मेन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग लास्ट 2 एपिसोड थी और आई स्टिल एंड आई थिंक द इंटरनेट स्टिल स्टैंड्स बाय द पॉइंट कि ये जो माँ बेटा हैं ये इंसान नहीं, ये कोई फरिश्ते हैं, आसमान से उतर के आए हैं, पता नहीं भाई इनको गुस्सा कब आता है. लेकिन बहरहाल दे आर रियली रियली टैकलिंग द गर्ल रियली वेल, खासतौर पर जिस तरह की सिचुएशन में वो हैं. तो द वे शहरयार मुनव्वर टैकल्ड हिज वाइफ इन द लास्ट 2 एपिसोड्स वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दैट वाज ड्रामा फीवर फॉर यू. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Floors clean.
4: Check.
3: Windows clean.
4: Check.
3: Kitchen clean.
4: Check.
3: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
5: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
9: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
13: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया.
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया.
13: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Umar Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
14: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
15: Aji, sunte ho?
16: Aji, nahi. Aji, sunte.
11: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
17: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
18: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
19: डील कहाँ?
18: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
19: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
20: AR रहमान लाइव विद अ फुल ऑर्केस्ट्रा. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

जी हाँ, और आप सबको भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनाती चलूँ। मंडे थ्रू फ्राइडे फ्लेम आवर चल रहा है जी तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट पे, जो कि लोकेटेड है गार्लैंड में। और क्या मिलेगा आपको इस फ्लेम आवर में, 5 बजे से शाम 8 बजे तक, ये 3 घंटे मंडे थ्रू थर्सडे। अगर आप तंदूरी फ्लेम जाते हैं तो 2 एंट्रीज ऑर्डर करने पे एक एपिटाइजर एब्सोल्युटली फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है आपको तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड। तो जरूर उनका मेन्यू चेकआउट कीजिए, तंदूरी flametx.com is where you need to log on to find out more details about them. Chahe chicken biryani ho, butter chicken ho, paneer tikka ho, dal makhni ho, koi bhi kisam ka aapko khana khana ho, vegetarian, non-vegetarian, har cheez aapko milegi tandoori flame pe. And special baat, ghar ke khane ke zaike jaisi. So ghar ke twist ke saath, this is tandoori flame for you. Do not miss their flame hour Monday through Thursday, 5 p.m. till 8 p.m. You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Ab chal raha hai aapke liye ji ट्रॉफी ट्रैक्स, यानी कि कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने मैं आपके लिए लगाने लगी हूं। ऐसे गाने जिन्होंने बहुत पजीराई पाई, ऐसी फिल्में जिन्हें मिली बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी। सो दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी साथिया, वी ऑल नो अबाउट इट, एंड दिस वन इज टेकन फ्रॉम कभी खुशी कभी गम।

And with that, it is time of that time of the day जब मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक बहुत ही special giveaway. जी हाँ, और वो giveaway आप सबको बहुत पसंद है. बेइंतहा calls आती हैं मुझे. Of course, जब स्टार इतने बड़े होंगे तो फिर उसके चाहने वाले और उसके टिकट्स को हासिल करने की दौड़ भी बड़ी सख्त होने वाली है. राहत फतेह अली खान साहब आ रहे हैं जी लाइव इन कॉन्सर्ट विद हिज सन शाहजमान अली खान, वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. ये हो रहा है फ्राइडे अक्टूबर 16th, यानी कि परसों 8:30 शाम एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. अगर आपने अब तक अपने टिकट्स नहीं खरीदे तो सुलेखा.com पे लॉग ऑन कीजिए और अपने टिकट्स खरीदिए. और जो है आपको बताते चलें, अब राहत फतेह अली खान साहब होंगे, उनके बेटे होंगे, तो आपको पता है कैसा आपको मिलेगा इम्तिजाज. मिक्स्ड कुछ क्लासिक मेलोडीज, कुछ कव्वालीज, कुछ सूफी, कुछ एक दो ड्रामा हिट्स भी मुझे लगता है मिलने वाले, क्योंकि शाहजमान अली खान ने आजकल कुछ ड्रामास के ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स गाए हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं. सो इट विल बी अ wonderful night that you really don't want to miss. October 16th, Friday, 8:30 PM, Comerica Center in Frisco. और अब आपके लिए ये दो टिकट्स मैं लेके आई हूँ जी. One winner will get one ticket, so I'm going to pick two winners. These tickets are brought to you by Kadai Point. Kadai Point Plano में located हैं, और अगर आप win करेंगे तो आपको Kadai Point जाना होगा. So get ready for that, and thanks to Kadai Point for bringing these two tickets for you. और सवाल बड़ा simple है, क्योंकि trophy tracks कर रहे हैं तो अवार्ड विनिंग फिल्मों के कुछ अवार्ड विनिंग गाने, तो कुछ ऐसा ही अवार्ड रिलेटेड सवाल आपसे पूछने वाली हूँ. मुझे बताइए कि राहत फतेह अली खान साहब को फिल्म फेयर में कितनी बार नॉमिनेट किया गया है. ये आपने मुझे बताना है कितनी बार राहत फतेह अली खान साहब ने नॉमिनेशन पाई है फिल्म फेयर अवार्ड्स में, और किस गाने के लिए उन्होंने जीता है फिल्म फेयर अवार्ड को. ये मैं आपको बता देती हूँ, एक ही बार उन्होंने जीता है. सो आपको मुझे वो गाना बताना है और टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेशंस बतानी है. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग टू टिकट्स. वन आई विन टू, आई पिक टू विनर्स ब्रॉट टू यू बाय कढ़ाई पॉइंट.

This was one of the songs jiske liye Rahat Fateh Ali Khan sahab ne paayi thi nomination amongst those five songs. Ji haan, 5 dafa Rahat Fateh Ali Khan sahab ne paayi hai Filmfare Awards ki nomination. Jin mein se jo jeeta hai award, that is for movie Ishqiyan for the song Dil To Bachcha Hai Ji. Aaj din chadhya, Dil To Bachcha Hai Ji, Sajda from the movie My Name Is Khan, Teri Meri Prem Kahani from the movie Bodyguard aur Sultan. के गाने जग घूमिया के लिए 5 बार इन्होंने नॉमिनेशन पाई. थैंक यू सो मच आप सबकी फोन कॉल्स का और बिल्कुल सही जवाब देने का. मेरे पास बहुत सारे जो है वो कॉलर्स थे, बहुत सारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, आप सब फोन कॉल करते हैं, यू टेक दैट टाइम आउट, यू पार्टिसिपेट, विच इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी, मुझे दो ही विनर्स पिक करने हैं. सो मेरा नजदीक तो आप सब विनर हैं, मेरा बस चले तो मैं आप सबको प्राइज दे दूं. बट आप जिस सीक्वेंस में कॉल करते हैं उसको एक नंबर असाइन होता है, वो मैथ के फॉर्मूले में डालती हूं मैं, और वहां से दो लकी विनर्स सेलेक्ट किए हैं, दो नंबर्स आए हैं, और वो दो नंबर्स हैं कॉलर नंबर 3 एंड कॉलर नंबर 7. दैट इज यात्रा गर्ग एंड गणेश शिंदे. सो यात्रा एंड गणेश, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन.

Don't touch that dial. Keep listening. Hi, hi, hi, hi, chickney.

और इसी के साथ योर बिजनेस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की रीच हो सोशल मीडिया पोस्ट से बहुत आगे, अटेंशन मिले उसे, रिजल्ट्स मिले आपको, तो फिर फन एशिया नेटवर्क इज ब्रिंगिंग यू इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स, आई कैचिंग ग्राफिक्स, कैप्शंस, कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ योर बिजनेस अक्रॉस फन एशिया रेडियो, डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स. रिलेटिव मीडिया देता है आपके बिजनेस को अ कंप्लीट कॉन्टेंट सोल्यूशन. सो वेदर यू नीड better content ya phir stronger visibility ya phir you need bigger audience, relative media can help your brand stand out. So what do you need to do? You need to give them a call. Koi sawal hai aapka, you want to book your content audit, whatever it is, give them a call. 469-442-3188, 469-442-3188. The number again is 469-424-3188. Relative media powered by Fun Asia Network. और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. ट्रैफिक से पहले वेदर, हमेशा वेदर के साथ ही शुरू करते हैं. आज है वेंसडे अक्टूबर द 14th, 4:49 PM इन द स्टूडियो, एंड अकॉर्डिंग टू वेदर बग इस वक्त सिटी ऑफ मिकनी में है जी 90 degrees, एंड इट फील्स लाइक 97 राइट नाउ. 30% चांस ऑफ शावर्स इस वक्त मौजूद हैं, तो कहीं कहीं ज़रा बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कहीं कहीं पे गरज चमक हो रही है. हाईज इन दी लोअर 90s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी विद 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग, देन मोस्टली क्लियर आफ्टर मिडनाइट. लोज अराउंड 70s. Pollen count is 8, which is medium high. UV index is 5, which is moderate. Sunrise aaj ka hua 7:30 AM subah, 7:30 AM, jabki aaj ka sunset hoga 6:54 PM.

0: Market knowledge, creative marketing, and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities, and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
2: Phone uthaye, number dabaye.
0: 347-449-4242.
3: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
4: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
3: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
4: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
5: बेटा 95% आए?
6: हाँ मम्मी.
5: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
7: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
11: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. I felt completely stuck. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
13: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: देखो जो पुराने जमाने की बातें हैं ना, वो किसी वजह से रखी गई हैं। इट्स अबाउट बैलेंस इन लाइफ। कुछ कुछ बातें हमारे बुजुर्गों ने सेट करी हुई हैं, जैसे कि घर में नाखून नहीं काटने चाहिए, स्पेशली रात को, और कुछ कुछ ऐसे और हैं। और उसी में से ना ये जो शादी है ना, ये देखो पुराने जमाने में किसी ने की थी, उसके बाद वो प्रथा चलती आई। इट्स ऑल अबाउट द राइट बैलेंस। और इसीलिए शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा खुशी भी ना दिमाग का संतुलन बिगाड़ देती है। इट्स फॉर द बैलेंस इन लाइफ ब्रो।
1: रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: It is 5:26 in the studio clock. Welcome back to your evening drive time show only on 104.9 FM Fun Asia Radio. कैसा है जी, बातें बातें जो होती है ना वो बड़ी कामयाब होती हैं, और ये जो तरीके हैं ये घर वालों ने सेट कर रखे हैं। इसलिए शादी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा खुशी फिर दिमाग टड़ो टड़ो हो जाता है। All right, आपको लेके चलता हूँ जी अगले गाने की तरफ, which is a song that I really loved from the movie, जिसका नाम है जी दृश्यम 3, and I heard this first time on the radio yesterday, and I want to share that with you, क्योंकि ये गाना जो है is brought to you by our very own

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
0: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ ही नहीं है।
2: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
1: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
2: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
4: मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
3: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
4: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
3: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
4: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
3: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
5: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट।
6: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
5: मिस क्लिक्स,
0: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
5: कस्टमर्स कितने आए?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Ladies, to mark her 15 years of service to the DFW community, Dr. Madhuri Gudipati, board-certified OBGYN, is moving to a new office location in West Plano, conveniently located on Dallas Parkway in Windhaven. Visit yourobgynspecialist.com or call 972-867-7500 for an appointment today. Dr. Madhuri, helping women lead healthy lives.
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Har mohabbat ki awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
8: Rahat Fateh Ali Khan.
19: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
20: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
19: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
20: Tickets on Ticketmaster and Solekha.com.

0: from her.
1: Remember the name Seema Mehta Law Firm. If you're looking for anything related to immigration, be that H-1B, F-1, L-1, or any other non-immigrant visa, planning your path to the U.S. permanent residency with the EB-5 program, then the law office of Seema Mehta can certainly help you out. Make sure to reach out to them on the website, which is seemamehtalawfirm.com. Or if you have questions, सवाल तो हमारे देशियों के हमेशा होते हैं. और अगर फ्री में आंसर मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है, है ना? तो आपको सवालों को भेजना है जी info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. और सिंगल हो, काफी लोग परेशान हैं यार, हम सिंगल हैं, घबराओ नहीं, नवरात्रि चल रही है, लड़कियां रख रही हैं तुम्हारे लिए व्रत यार, आएगी आएगी आएगी.

0: तू दिया के साथ ये सब नहीं करता?
1: शाहिद कपूर अलॉन्ग विद कृति सनन इन दैट मूवी. आई थिंक शाहिद एक्टिंग वाइज आई लाइक हिम. पहली पिक्चर से ही इश्क विश्क प्यार वार वाज द फर्स्ट रियल मूवी दैट वी सॉ हिम इन. एंड फ्रॉम दैट मूवी ऑन आई थॉट कि यार नहीं, दिस गाय हैज द टैलेंट एंड ही विल डेफिनेटली डू समथिंग दैट वी विल ऑल इन्जॉय. एंड दैट्स व्हाट वी सॉ एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न. आई थिंक उसमें इनका सिक्का जो है अव्वल है. हाँ, मूवी सिलेक्शन कुछ कुछ अजीब सी है. आई मीन दो तीन लास्ट मूवीज अपार्ट फ्रॉम द वन विद द न्यू एक्ट्रेस रश्मि, वो जो हमारी इंटरनेशनल नेशनल क्रश बन गई थी, जो भी उनका नाम भूल रहा हूँ, बट उनके साथ जो फिल्म आई थी जिसमें वो था हल्का हल्का फीवर है, दैट सॉन्ग वाली मूवी, जबरदस्त एक्टिंग. आई थिंक एक्टिंग वाइज दोनों ने, फ्रॉम द गर्ल्स परस्पेक्टिव जो फीमेल थी उन्होंने जो एक्टिंग करी है, दैट इज अमेजिंग टू सी फॉर, आई वुड स्टिल कॉल हर अ न्यू कमर, बट इट वॉज फैंटास्टिक. वन मोर ट्रैक. इस गाने के बाद लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, बट आई डू वॉन्ट लेट यू नो ऑन द 1st of November वी आर गेयरिंग अप फॉर द 6th एनुअल साउथ एशियन फूड फेस्टिवल. और इसमें फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग फॉर ऑल ऑफ यू. द इवेंट इज ऑफ कोर्स फुल ऑफ फूड जर्नी फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम एशिया. साथ साथ आपको इस बार मिलेगी जी फर्स्ट टाइम रामलीला, दैट इज बीइंग होस्टेड इन कोपल. इट्स अ 45-minute रामलीला स्टार्टिंग एट 4 o'clock. एंड दिस टाइम वी आर ऑल्सो एडिंग 20-foot गणेशा, 16-foot पार्वती जी एंड 16-foot सरस्वती जी, लक्ष्मी एंड सरस्वती जी, विद LED लाइट्स फॉर यू गाइज टू कम एंड डू योर दर्शन. सो मेक श्योर टू कम विद द एंटायर फैमिली, लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट of fun and lots of prizes and giveaways.
2: Definitely.
1: If you need a booth, give me a call. 972-302-7012.
3: जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं, जो आज नहीं तो कल अपनी मंजिलों को ढूंढते हुए निकले.

0: देखो दोस्तों, लाइफ में जो फ्रेंडशिप है ना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, और इसको बरकरार रखना हमारे ऊपर है। आई लव द फ्रेंडशिप दैट आई हैव विद सम ऑफ यू। आप कॉल करते हैं, वहाँ से बातें करते हैं, वी गेट टू एंजॉय ईच अदर्स डेज, कॉन्वर्सेशन, वट एवर इट इज़। बट एक छोटा सा ये जो दोस्ती है, इट्स ब्यूटिफुल। मैं जान भी दे सकता हूँ आपके लिए, जान हाजिर है आप सबके लिए, बस मांगना मत। ब्रेक के बाद आया।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Ekta Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
11: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
10: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
11: October 17th, Mata Ki Chauki.
10: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
11: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
12: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here, everything is better.
13: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
14: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
15: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
13: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
16: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
17: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
18: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: स्टॉप फेस्टिव फैशन चेक नवरात्रि के आउटफिट्स रेडी है
19: दो चनिया चोली है मिक्स एंड मैच कर लूंगी
9: फैशन वायलेशन सेम आउटफिट को नौ रात ओवरटाइम
19: तो सॉल्यूशन
20: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि प्लानिंग अ वेडिंग डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर jyotikapateldesigns.com इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस
21: दिवाली बाजार हो या फूड स्टॉल अपने बिजनेस को दीजिए फेस्टिव स्पॉटलाइट बुक योर बूथ एट द साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज नवंबर 1st द साउंड कपेल कॉल मार्विन 972-302-7012
22: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Instagram or other places because it's really getting viral. He is in the MTV Hustle and he has some different writing that he writes, man. Itni pyari likhai hai ki main kya hi batau. Here we go with his latest track called Patta.
1: एक नदान पत्ता अपने पेड़ पर था हरा भरा उग चुका था वो पेड़ पर बस टंगा टंगा हजार पत्ते होंगे उस पेड़ पर और फिर भी समझता वो खुद को उस तने पर काफी तन्हा तन्हा हवा हवा कहता मुझे साथ ले जा कहीं पर ले जा मुझे आसमां में छोड़ दे आसमी पर देख कर ये दुनिया मैं आबाद होना चाहता मैं आजाद होना चाहता मुझको कैद से आप बरी कर आधे हंसते उस पे पत्ते आधे यही समझाते कि यहीं पैदा होकर पत्ते यहीं पर ही मर जाते अगर वो ऊपर वाला चाहता हम भी पाए उड़ तो उन तितलियों को देख

वाला तभी तभी मर गया वो पत्ता, तभी मर गया वो पत्ता, तभी मर गया वो पत्ता, मर गया वो पत्ता।

एक जगह पे ना एक लेडा और लेडी बैठे थे, मतलब लड़का और लड़की बैठे थे, तो उनसे पूछा गया सवाल कि आई लव यू टू, यू नो आई लव यू तो होता है, आई लव यू टू को हिंदी में कैसे बोलेंगे? तो लेडी ने बता दिया फटाफट से, आई लव यू टू को बोलेंगे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है ना। लड़के की बारी आई तो मैंने बोला मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ,

0: बंदा है बंदा से जी, नाम अरविंदा से। 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आज है अक्टूबर की 14 तारीख और बुधवार की शाम है। और आज के दिन अगर बात की जाए तो द रियलिटी टीवी सीरीज जिसका नाम था जी कीपिंग अप विद द कार्डशियंस, यू नो द कार्डीज, या दैट वाज प्रीमियर्ड ऑन टुडेज डेट। द डेट वाज 14th of October, द ईयर वाज 2007। कितने साल हो गए यार, मतलब 13 और अब 6 19 साल। मैन 19 ईयर्स दिस शो स्टार्टेड। पता नहीं लगता वक्त कहाँ जाता है, पर तब जरूर पता लगता है जब एनिवर्सरी आती है कि वक्त कहाँ गया।
1: खबरा है ये लोग ही है, होशियार है, तो तुम खोटे, इसके दो धारी तलवार है।
0: बंदा 20 साल के बाद ये सोचता है अभी तक 20 साल ही हुए हैं बस। लेडीज गलत मत सोचा करो यार, बंदा ये सोचता है अभी सिर्फ 20 साल ही हुए, मतलब इतनी जल्दी टाइम निकल गया। अब आपके लिए समझ लो बस। हाँ,
1: चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जो कि आपकी हेल्थ के लिए खुद आगे आ चुके हैं जी। कहते हैं वी आर गोना मेक श्योर द DFW देसीज आर टेकन केयर ऑफ दिस सैटरडे। सैटरडेज और संडेज को बड़ी दिक्कत रहती है ना, पीपल कैनॉट सी ए डॉक्टर ऑन सैटरडेज एंड संडेज। तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हैज ब्रॉट अ सॉल्यूशन। डॉक्टर चेरिल चमतिल, बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन फ्रॉम पैशन हेल्थ, इज नाउ अवेलेबल। सैटरडेज को मिल जाएंगे आपको 9 से 1 बजे तक। And you don't have to miss any work for that visit Saturday ke liye. And if you're looking for a doctor on Sunday, they also have the Irving and Frisco location open. The Irving location is on 230 O'Connor Ridge Boulevard in Irving, Texas. Give them a call. 214-666-6259. For now, it is one track that I'm bringing your way. Uske baad aa raha hai ji giveaway coming up from none other than Barista House. You can win $20 gift certificate from them absolutely free. All you have to do is just be right here on

0: Hold on. That was a beautiful number from the track, from the movie Baar Baar Dekho, and I'm going to take you to the next one. Before that, I told you I have a giveaway coming up from Birista House, so let's take you there. I'm going to get you going with the $20 that can be absolutely yours. $20 ka ek gift certificate ya unka ek gift keh lijiye, gift coupon keh lijiye, that comes towards you. All you have to do is answer a simple question. Now, there are certain conditions to win this giveaway. Pehla ye hai ki aapne ye giveaway pehle last 30 days mein nahi jeeta hona chahiye. Number two, this is located in Frisco, right at the intersection of 121 and Custer. And this is a place where you get all of the North Indian food. Saath mein Hyderabadi biryani inki ek class hai. They have a bar because they are in Frisco because of Prism Bar and Grill, and they are coming from Denton after making a huge noise there. So, chalo, sawal shuru karte hain. Aapko batana hai ji mujhe jawab. And it doesn't have to be the best answer, but the closest answer will do. Right? Aapne ye dekha hai ki jab aadmi ki shaadi hoti hai, तो एवरी थिंग रिमेन्स द सेम, बट दो लोगों की वजह से वो एक स्टूडेंट की तरह रहता है. मतलब ही हैज़ टू लर्न एवरी डे. एटलीस्ट वो दो लोग सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ये सीख रहा है. ये दो लोग कौन हैं और उनको क्या लगता है कि क्या सीख रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 972-235-5555 इज़ द स्टूडियो नंबर. वंस अगेन, बंदे की शादी होने के बावजूद भी उसके कोई दो ऐसे लोग होते हैं उसके बिल्कुल आसपास जिनको लगता है कि ये आज भी शिष्य ही है, ये स्टूडेंट ही है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, कोई ना कोई इसको कुछ ना कुछ सिखाता है. दो लोग कौन हैं और वो क्या सिखाते हैं, ये आपने मुझे बताना है. 972-235-5555 नंबर टू द स्टूडियो. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, आपका नाम?
1: राजेश.
0: राजेश जी कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे?
0: ठीक हो तो थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है. भाभी साथ बैठी हैं क्या?
1: नहीं, भाभी नहीं है साथ.
0: अच्छा, भाभी नहीं है. राजेश भाई, वो दो लोग कौन है और वो क्या सिखाते रहते हैं इसको?
1: मुझे लगता है मेरे हमारे मम्मी डैडी.
0: अच्छा, मम्मी डैडी.
1: जो लड़का कभी कुछ से कुछ करता नहीं था, शादी के बाद सब कुछ कर रहा है, बर्तन से लेके कपड़े सब कुछ हो रहा है.
0: तेरा भला, आपके साथ ऐसा जुलम हुआ है?
1: हाँ, इसलिए तो आवाज कम है.
0: अरे राजेश, गला थोड़ी दबाया, सिर्फ बर्तन दलवाए थे, आवाज को क्या फर्क पड़ गया? चलो कोई बात नहीं राजेश भाई, आपका जवाब मैंने लिख लिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो. रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका ज्यादा. कौन बोल रहा है?
2: हेलो मार्विन जी, कैसे है?
0: मैं बढ़िया हूँ, कैसा कहा है? आप कौन बोल रहे हैं भाई?
2: मैं सुलोचना बोल रही
0: हूँ.
2: सुलोचना.
0: सुलोचना. सुलोचना मुझे बहुत ज्यादा पड़ेगा सोचना. इस नाम का मतलब बताओ.
2: मेरे नाम का मतलब सुंदर आंखों वाली.
0: अरे वाह सुलोचना, तो सुंदर सुंदर आंखों वाला क्या बोलेंगे? सुलाचाना ना?
2: सुलोचन. सुलोचन.
0: सुलोचन. चलो मैं सुलोचन, तुम सुलोचना, कैसी हो?
2: ठीक है, अच्छी हो आपके.
0: अच्छा सुलोचना जी, ये कौन दो लोग हैं? हाँ, और क्या सिखाते रहते हैं?
2: मेरे को मेरे हिसाब से लड़के की मम्मी और लड़के की वाइफ. वाइफ को लगता है मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, मम्मी को लगता है कि ये वाइफ जो सिखा रही है वो कर रहा है.
0: अच्छा,
2: तो दोनों अपने अपने हिसाब से सिखाते रहते हैं.
0: सुलोचना जी, सुलोचना जी, आपका जवाब मैंने लिख लिया है, सुनते रहे. एक मिनट में बताता हूँ कौन जीत रहा है कौन नहीं. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो. रेडियो वॉल्यूम लो, आपका वॉल्यूम ज्यादा. हेलो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो बेटा. कौन बोल रहा है जी? गुड इवनिंग.
3: हेलो जी. हाय मार्विन.
0: हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार. आपका नाम?
3: मेरा नाम अमन. और आपके इस सवाल का आंसर है बेसिकली, एक्चुअली ऐसा है कि माँ को लगता है अरे मेरा बेटा कुछ ना कुछ रोज अच्छा सीख रहा है अपनी बीवी से, और बीवी को ऐसा लगता है कि अरे भैया ये तो बहुत अच्छा सीख रहा है अपनी माँ से. अब ये क्या सीख रहा है ये किसी को नहीं पता चलता, और इन सब में मजा ले रहे होते हैं पापा जी.
0: अच्छा, और ये कुछ अच्छा ये सोचती हैं कि कुछ अच्छा सिखा रही है वो ऑपोजिट.
3: अरे अच्छा, आप समझो ना, दोनों को ऐसे ही लगता है कि कुछ अच्छा सिखा रही है, और अच्छा किस सेंस में सीख रहा है इंसान वो नहीं पता चलता किसी को.
0: अमन जी, आपकी शादी हो गई?
3: अरे सर 25 साल हो जाएंगे अगले साल.
0: तो ना चाहते हुए भी अमन है आपके पति की लाइफ में?
3: शांति भी है.
0: अमन और शांति है भाई, चाहे ना चाहे. चलो अमन, कांग्रेचुलेशंस, दैट इज एग्जैक्टली द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. फ्रिस्को जा सकती हैं?
3: अरे बिल्कुल, मैं तो रोज फ्रिस्को जाती हूँ.
0: अगर आपके पति कॉल पे होते ना और मैं उनसे पूछता फ्रिस्को जा सकते हैं, तो वो कहते हैं, तो वो अगर वो कहते हैं हाँ तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, जाने देती हैं अमन जी आपको. अमन जी
3: अरे
0: हो
3: जाने देती, हम दोनों इकट्ठे जाते हैं.
0: ऑल राइट, कांग्रेचुलेशंस, यू वन योरसेल्फ $20 फ्रॉम बरिस्ता हाउस राइट हियर इन फ्रिस्को. होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. बस जी ऐसे ही मजे मजे में हम चलते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू मैन, वी मेक यू एंजॉय दिस शो, दैट्स द पर्पस ऑफ फनेजिया. टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक, एंजॉय दिस वन. दिस वाज विद एन आर्टिस्ट जिन्होंने ज्यादा काम फिल्मों में नहीं किया, बट आई थिंक ही हैड द कैपेबिलिटी. द एक्टिंग स्किल lacked a bit, but dancing was spot on.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
3: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
2: 20 को गरबा का प्लान,
3: देन फ्लेवर लाउंज,
2: 1st को दिवाली मीटअप,
3: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज।
2: और आज कोई प्लान ही नहीं है
3: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
4: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए,
1: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
5: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
3: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही 2-3 ऑप्शंस।
6: ऑप्शंस? I will give you the latest destination.
1: Introducing Pooja's Trends, lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends, your trend, your style.
7: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
8: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
1: डील कहाँ?
8: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है।
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: AR रहमान, लाइव विद अ फुल ऑर्केस्ट्रा। Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.

अरिजीत सिंह जिस गाने को अपनी आवाज दे देता है, बस वो गाना ऑटोमेटिकली यार हमारे दिलों में समा जाता है। कुछ है ऐसा खास इनकी आवाज में। एंड मिथुन का म्यूजिक, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी डेडली एंड इट रीचेस स्ट्रेट टू आवर हार्ट्स। आई एम गोना टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट द टेक्सास स्टार रिहैब, व्हिच इज अ रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर। स्पेशली अगर आप यू क्रॉसिंग योर 40s और योर पेरेंट्स आर इन 60s एंड बियॉन्ड, देन अगर आपके जॉइंट्स में से टक टक की आवाज़ आती है या आपका जो बैक है वो आउच के बने आप उठ नहीं पाते हो, व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड यू गो एंड अगर आपकी नीज को कुछ प्रॉब्लम है, यू थिंक दे आर यू नो हैविंग सम इशूज विद पेन वाइल यू गेट अप, यू डू योर स्क्वाट्स, दैट इज़ नॉट नॉर्मल एक्चुअली। इफ़ यू लीव इफ यू आर यू नो इफ यूर इफ़ योर सप्लीमेंट्स आर राइट, यानी कि जो आप खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन अगर सही है, एंड इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज, देन दिस शुड नॉट बी द केस। नाउ इफ यू आर नॉट इन टू दैट, देन गेट विद टेक्सास स्टार परफॉर्मेंस सेंटर एंड रिहैब। दे विल मेक अ प्लान फॉर यू, गिव यू द बेस्ट न्यूट्रिशन गाइड, ताकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो, एंड सम नेचुरल एक्सरसाइजेज दैट कैन हेल्प यू रिकवर। दे हैव रिकवर्ड मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज एंड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। द वेबसाइट इज texasstarrehab.com, texasstarrehab.com, एंड द practitioner Mr. Rushi has a great pretty much entire life he's done physiotherapy, and also the physiotherapist for Mumbai Indians, New York and many other sports personalities. चलो वक्त हो गया है जी मेरा जाने का, बट उससे पहले ये भी रिमाइंडिंग यू कि नवंबर 1st संडे इज कमिंग आर 6th एनुअल साउथ एशियन फूड फेस्टिवल एंड दिवाली सेलिब्रेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग अ रामलीला देयर इन कोपेल। 4 PM इट स्टार्ट्स। इट्स अ 45-minute रामलीला विद अ बिग क्रू ऑफ 25 to 30 पीपल। उसके साथ वी हैव 20-foot गणेश एंड 16-foot लक्ष्मी एंड 16-foot पार्वती जी, सरस्वती जी राधा, विद LEDs embedded इन them, दैट विल बी अ ग्रेट साइट टू सी। एंड ऑफकोर्स फ्री स्पार्कलर्स फॉर एवरीबडी। शाम को इकट्ठे मिलकर फुलझड़ियाँ जलाएंगे। फन जर्नी ऑफ फूड थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड मोर। एंड ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन द स्टेज, बाउंस हाउसेज फॉर द किड्स, फेस पेंटिंग एंड अ लॉट मोर इंक्लूडिंग कार्निवल गेम्स। तो अपना बूथ लगाना चाहते हैं, वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल, माई नंबर इज 972-302-7012, that's 972-302-7012. All right, with that, one more track, and after that, I am asking for Alvida.